वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नर नारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर

सरता दारावतान बांतवान क मनुष्यान तरसबुत न्यू तेली तेलत मंगिडीम कान सपुलू टॉन बांतवान क मनुष्यान दान बांतवान पनांग गुलांगान बंचाना सरता ओबात ओबतान पंतेंग तरमासुक पड़लिंग गापान होनियान समंतारा समूलित पाकित कबर सेहान दीरी दान लांपू त नागा सूर्या मिललुई उंगो हांदी मीडिया सोशल मंत्री लुआर नगरी डॉक्टर एस जय शंकर मन दकान बाबा इंडिया बर डीरी बर सामान नेपाल दान राकेतन दला मंगा तातांगान इनी कदुता आन वसार ती काठमांडू मलेरिस नंबर जरूरत उनतुक बांधुआन दान इन्फॉर्मासी तरकाई वर्ग नगारा नंबर नंबर तरसबुत अराला संविलान तुजू तुजू संविलान लपान नीमा सातु तिगा सातु नाम लपान नॉल तुजू दान संविलान तुजू तुजू संविलान तुजू नॉल संविलान सातु नॉल तुजू लीमा नॉल नॉल दिवान परिवेशात नेपाल जुगा मलेरिस नंबर स्वरूपा उन्तु क पड़लुआन वांतुआन तरमासुक नंबर दरूरत बेबास पुलसा सरिबू दुआरा तुस्तिका पुलु एम्पात सरिबू सालुरान सियागा सरिबू सरातुस एम्पात पुलु एम्पात दान नंबर पॉलिसी परिवेशाता संविलान दिलपान लीमा सातु तुआ दलपान संविलान एम्पत एम्पत लीमा कदुतान बिसार इंडिया दि बीजिंग जुगा मन्य दियाकान नंबर सालुरान बांतुआन नॉल नॉल दलपान एन नाम सातु दलपान लीमा सातु एम्पत दुआ दलपान एम्पत संविलान नॉल लीमा यंग जुगा दपा दी हु बुंगी मलालोई व्हाट्सएप सती तक कान्या लीमा पुलु वर्गा इंडिया यंग दिला बोराड कान हिलंग मरुपकान पजाइरा परजालान कैलाश मानसरोवर यात्रा बरबराबर नगर बागियान दी इंडिया तरमासुक उत्तर प्रदेश जन केरला जुगा तिला मन दिया कान नंबर सालुरान बांतुआन बैंक दुनिया तेला मनवाड़कान बांतुआन कौआंगान जरूरत सबेसार दो पुलो लीमा मिले रुपी नेपाल कपाड़ा नेपाल उनतु क पड़लुआन पनेला मातान बांतुआन क मनुष्यान दान रिकन्स्ट्रक्सी विलाया यांग तरदम पाक सलाइन वर्गा इंडिया दान वर्गा इंडिया परांतुआन NRE विसातावान लाइन यंग दिला पोराड़कान हिलांग बड़साल दारी लबी दुआ लुसिन नगारा तरमासुक अमेरिका सरिकात मलेशिया इंग्रेस अफ्रीका सलतान ऑस्ट्रेलिया दान बलांदा मंत्री लुआर नगरी शिशिर खनल मंग इन्फॉर्मासिकान कपाड़ा देवान पड़े वकीलानान राख्यात लपान पुलु पर्सोनल कियावानान तरमासुक एम्पात पुलु एम्पात पर्सोनल अंकातान धरत नेपाल नीलापुराकन हिलांग दाड़ी बरबगई लोकासी बांजर बांदांग तरसबुत मरुसाक देवलापान प्रोजेक्ट पंग पंबांगित लिस्ट्रिक्ट नागा आई पे एल ते आ यंग सदांग बारो पर राशि देंगान टोटल कैपेसिटास तिगा रातोस लीमा पुलु एम्पात मेगावाट सरता लीमा प्रोजेक्ट यंग सदांग दलाम तथा पंबांगुनान दी लिस्ट्रिक्ट नुगावा दान रसुआ संविलान विलास जम्बतान यंग दपात गंदारा जुगा हान्या तरबाबा अरुस पर्सनल अंकतान दरत नेपाल अंकतान क पुलिसियान बरसिजान तदन क पुलिसियान नेपाल तेला दिके राहकान क विलाया विलाया तरदम्पक उन्तुक मलास्कान उपाय पन्यला मतान दान पंबरियान बंतुआन प्रेसिडेंट योंगकोंग सी जिनपिंग मंबरियन ताकान पंगराहान सगाला उपाय उन्तुक मंचारी दन मनिय लमतकान ओरांग ओरांग यंग हिलांग सब आन्याक सरातुस एम्पर पुलु लीमा पत्तुगुस दान अंकोता दारी देता सिमेन सिगाजे दी बाबा नागुआन क पुलिसियान पर से जानता राख्या तेला दी किरीम क पोस्ट पर्वतासान यंग तरदाम्पक गुना मम्बांतु अपरासी तांगापन दरूरत सी जुगा मने कानकान पंतिंग्या मंपरकुआ दान पमंतुआन दान परिंगतान दीनी ममास्तिकान पिलाकासान अपरासी पनेला मतान यंग दिला दसारकान पाडा पंडेका तान इलमी हा सरता ममवास पढ़ाई कम उमगिंकान तरजादीनिया बंचाना सोलसान प्रेसिडेंट नेपाल रामचंद्र पौडेल तेला मनम पैकान रासा दुख चिकत आता जातून या कोरबान जीवा दन कड़ वेगान हरता बंदा आखिबात बांजीर बांदांग तरसबोध मंत्री दलामना करी अमित शाह कमानेन पर विचारा दिंगान कपाला मने मंत्री बिहार दान उत्तर प्रदेश मंगेनाई बांजर दी नेपाल

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी

0: मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दे नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कम्बल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861852428405। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन

0: नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
4: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत आने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद प्रियंका।

नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की

0: नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचाहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस: Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians, missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday, and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. More from our correspondent.
3: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing. According to China's state-run news channel, 3 people were killed and 265 are missing on the Chinese side of the border. Videos from the affected areas showed a powerful surge of muddy water, rocks and debris sweeping through the border region. Officials said that around 100 people have been rescued from different parts of the affected areas. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information.

0: border near Tibet. The Statesman headlines, devastating flash floods in Nepal, death toll at least 95, over 100 Indians missing. Tribune headlines, 100 dead in Nepal deluge, 133 Indians missing. Times of India reports, 160 killed in deadly Nepal deluge, at least 133 Indians among 844 missing. Another major story covered on the front page of most dailies is the Trump administration pausing all visa appointments worldwide. Hindustan Times says, U.S. pauses immigration visa interviews amid crackdown, while the Asian Age headlines, U.S. pauses visa appointments worldwide. Another story covered in newspapers is Maharashtra Public Service Commission cancelling the recruitment process for Drug Inspector Group B post following an inquiry into alleged malpractices in the screening exam conducted earlier this year. And finally, a story in Times of India says that from Tokyo to London, heat waves send men to work in shorts. Japan's capital led the way, followed by London, as extreme temperatures swept across Europe. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Center begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. Adab. खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। अब खबरें तफसील से। नेपाल के वस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, जबकि 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए ये सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे ये जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब ये सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई। नेपाल सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए, जबकि 265 लापता हैं। हुक्काम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वजीर आजम मोदी की तरफ से यगांगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बहम पहुंचाने और भारत

0: कई शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इधर पेशिंग में भी भारत के सिफारत खाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैया लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुख्तलिफ मकामात से नेपाली फौज के 44 अहलकारों समेत 80 सिक्योरिटी अहलकार लापता हैं। अचानक सैलाब आने से 8 पनबिजली प्रोजेक्टों को नुकसान पहुंचा है जिनकी मजमुई सलाहियत 354 मेगावाट की थी। इसके अलावा 19 पुल भी सैलाब के पानी में बह गए हैं। नेपाल की फौज, मुसल्ला पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के अहलकार मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से मैं शमीम इरफान।
0: नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ NDRF सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माय भारत कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम पूरे मुल्क में किया जाएगा। इसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हर जिले में 2 कॉलेजों से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके जरिए खेलों और नौजवानों के रहनुमाओं, सिविक जिम्मेदारी, रजाकारों, फिटनेस और मुल्क की तामीर में शामिल लोगों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस डायलॉग के जरिए नौजवान अफराद को खेलों से मुतालिक मुल्क की उमंगों के सिलसिले में बराह रास्त बात करने का मौका मिलेगा और इस तरह उनके ख्यालात और नज़रियात भारत के यूथ और स्पोर्ट्स इको निज़ाम के बारे में जारी मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकेंगे। इसकी एक अहम खसूसियत युवा संवाद का एहतमाम होगा जहां नौजवान शुरका को अपने ख्यालात और नुक्ते नज़र को बयान करने के लिए मदु किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम एक तंदुरुस्त, डिसिप्लिन और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए के आयन मुताबिक हो रहा है जिसमें नौजवानों की उमंगों को मुल्क की तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम अम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैंस और कौमी इमदाद बाहमी सारिफिन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार मराकज के जरिए प्याज 35 रुपये फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کے دورے پر جا رہے ہیں. وہ گجرات ودیا پیٹھ کے تقسیم اسناد کی 72ویں تقریب میں شرکت کریں گے اور احمد آباد

0: आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब अमित शाह अमरेली जिले के दुधला इलाके में नौ तामीर शुदा हैदनी झील का इफ्तिताह करेंगे। इसे हरे कृष्णा फाउंडेशन ने तैयार किया है। बाद में वजीर दाखिला अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें वो आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सपहर को जनाब अमित शाह मेहमान खसूसी की हैसियत से गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे और वहां तलबा से खिताब भी करेंगे। बाद में वो भोपाल के घाटलोदिया हलके में लोक दरबार में शिरकत करेंगे, जहां वो मकामी लोगों से बात करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के दौरान रियासत में ख्वातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ख्वातीन मुसाफिर आज से 29 अगस्त की निसफ शब तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और शहर की बसों में एक फर्द के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। ये सहूलत 900 से ज्यादा बसों में दस्तियाब होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट गाड़ियों को भी हिदायत दी है कि वो मनमाने तरीके से किराया वसूल न करें और मुसाफिर से तयशुदा किराया ही लें। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजाइश से ज्यादा सवारी बिठाने, ज्यादा किराया वसूल करने और मुसाफिरों के साथ बदसलूकी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुकूमत रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की आम बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। ये सहूलत आज दोपहर से शुरू होकर कल आधी रात तक मुअसर रहेगी। 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी ख्वातीन के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये सहूलत दिल्ली और चंडीगढ़ समेत किसी भी मुकाम के सफर के लिए वैलिड रहेगी। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीज़ा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फ़ायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड जारी करने से मुतालिक जाब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजामिया ने H-1B वीज़ा के लिए $1,03,265 की नई दरख्वास्त फीस तजवीज़ की थी। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निमटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। ये कदम एक अहम तारीखी तस्फीये के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। अलबत्त कंपनी को पूरे अमरीका में मुख्तलिफ अफराद और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। कोलंबो में सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा को आलमी ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: बैन अल-अक़वामी सतह पर मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सिक्किम के त्रिलोक सुब्बा को जनूबी कोरिया के शहर चुनचियोन में आलमी ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। ये चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक होगी। सुब्बा मर्दों के अंडर 60 इनफरादी पोमसे और सीनियर जुमरे के टीम मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलेक्शन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में मुनक़िद हुई नेशनल ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में नेशनल टीम के लिए सोने का तमगा जीता था। मैनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: شکریہ کلیم۔

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 16 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार पर बजाया राग राग विभास। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर राशिद मुस्तफा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार पर बजाया राग राग विभास। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर राशिद मुस्तफा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

9:30 का वक्त रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। दस बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे आपका अपना पसंद का कार्यक्रम आपकी पसंद, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये थी जानकारी आगे की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 9:15 होने को है, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविंद्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रोफेसर रविंद्र धर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
4: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, एवं आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है। ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया, उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को, और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए, मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
3: अपनी भाषा में इसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं, ये इतना आसान है क्या?
4: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। वही इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
3: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो, अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
4: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहाँ पे।
3: जी जी,
4: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल

0: हाँ है तो वन साइडेड है, दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें।
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पे सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है,
1: जी
0: अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स की पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला, जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो
2: जी
1: कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस
2: हाँ
1: होता
2: हाँ
1: था,
2: हाँ बिल्कुल।
1: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं, और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
1: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
1: जरूरत क्या पड़ी इसकी, क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी
1: जी
2: है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
1: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स
1: जी
2: यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
1: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है, इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
2: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में।
2: नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र, एक पत्रकार। आज का हमारा विषय है मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से अपेक्षाकृत दूर माना जाता रहा है, लेकिन अब यह धारा तेजी से बदल रही है। मेघालय को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने विकास के नए मानक स्थापित करने की कोशिश की है। खास तौर पर राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति निजी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह नीति न केवल निवेश को बढ़ावा देने का माध्यम है बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण आधार भी। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि मेघालय अब केवल प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटनों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि तकनीक और उद्यमशीलता के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकसित होना इस बात का संकेत है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नवाचार की राह पर चल रही है। राज्य का पहला आईटी पार्क पूरी क्षमता के साथ संचालित होना और दूसरे आईटी पार्क की बढ़ती मांग यह दर्शाती है कि मेघालय डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया सपने को साकार कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि इस दिशा में राज्य की संभावनाओं को और मजबूत करती है। केंद्र सरकार की भूमिका भी इस परिवर्तन में अहम है। यह सर्वविदित है कि श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के विकास के केंद्र में रखा है। उनकी सोच स्पष्ट रही है कि जब तक देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत के समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। पूर्वोत्तर को केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि इसे भारत की अष्ट लक्ष्मी के रूप में पहचान दी। उन्होंने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को समझते हुए आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। पिछले वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बोगीबिल ब्रिज जैसे रणनीतिक महत्व के पुलों का निर्माण, विभिन्न राज्यों में नए रेलवे ट्रैक का विस्तार और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत नए हवाई मार्गों की शुरुआत ने पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच रही है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं में नई क्रांति आई है। बजट में भी इस क्षेत्र को पहले से बहुत ज्यादा मदद मिली है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 के बीच जितना पैसा पूर्वोत्तर को मिलता था उसकी तुलना में अब सकल बजटीय समर्थन GBS 208% बढ़ गया है। इसके अलावा क्षेत्र के लिए खास योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना में भी इस क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है। इसके प्रमुख उदाहरणों में सौभाग्य योजना के तहत पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में 100% घरों तक बिजली पहुंचाना और हर घर जल योजना के तहत लगभग सभी घरों को पानी पहुंचाना शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा और साफ बदलाव कनेक्टिविटी यानी आने जाने की सुविधा में हुआ है। उड़ान योजना के तहत अब इस क्षेत्र में हवाई सेवाएं काफी बढ़ गई है। वर्ष 2014 तक जहां 68 साल में सिर्फ 9 हवाई अड्डे थे वहीं अब यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिली जो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। इससे तेज रफ्तार रेल सेवा की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र

0: सरकार ने केवल आधारभूत संरचना तक ही सीमित प्रयास नहीं किए, बल्कि पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर ने जितनी तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ी है वह ऐतिहासिक है। स्पष्ट है कि मेघालय अब संभावनाओं की भूमि से आगे बढ़कर उपलब्धियों की धरती बनने की ओर अग्रसर है। यदि यह गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मेघालय पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विकास और नवाचार का प्रेरक उदाहरण बन सकता है।
1: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खान को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू।

نظر سوئے حرم ہے دل سوئے مدینہ ہے.

जानूं तो किस बात का है, जब सामने दोनों तो किस बात का है।

मुझ जैसे गुनाहगार को भी आपका गम है, मुझ जैसे गुनाहगार को भी आप

लुत्फो करम मुझ पे वो कम है, जितना भी करे लुत्फो करम मुझ पे वो कम है। फिर मैं

हाथों से छुआ हो तो कसम है, सागर कभी हाथों से छुआ हो तो कसम है। इसी यहाँ का शमीम अपने ये आलम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, हर बीतते दिन के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं और आवाज़ का ये रिश्ता हर दिन गहराता जाता है। बातों मुलाकातों का ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे, हमें आपका प्यार स्नेह और साथ ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो कार्यक्रम का करते हैं आगाज। आज के पिटारे में होंगी खूब सारी बातें, खूब सारी जानकारियां और होगा मनोरंजन भी, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के प्रश्न का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, तो आज का प्रश्न जुड़ा है आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी से कि आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है हमारी मेल आईडी पर, जो कि है fmgoldga@gmail.com।

अनुपमा फिल्म से अभी आपने ये सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं दिन विशेष की। आज 27 अगस्त को श्री जगन्नाथ मंदिर में आज बलभद्र जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, वैदिक परंपराओं और उड़िया संस्कृति के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव भगवान बलभद्र के दिव्य अवतरण को स्मरण कराते हुए भक्तों को शक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान बलराम को समर्पित ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है और भगवान बलराम को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, शक्ति, कृषि और परिश्रम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से हल और कृषि से जुड़े उपकरणों की पूजा की जाती है। तो आज के इस शुभ दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं हैं। और श्रोताओं, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है। ये दिन धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। ये सावन महीने का अंतिम दिन है और पूर्णिमा के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हम सभी जानते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दक्षिण भारत में से नारियली पूर्णिमा और अवनी अवितम के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से कजरी पूनम या कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा हमें रिश्तों में प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी को मजबूत करने का संदेश देती है। तो इस पावन अवसर पर अपने संबंधों में स्नेह बनाएं और आज के इस शुभ दिन की भी आपको शुभकामनाएं। और आज श्रोताओं, एक और खास दिन है, वो है वर्ल्ड लेक डे। हर साल 27 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है। विश्व झील दिवस का जो मनाने का उद्देश्य है वो झीलों के महत्व, उनके संरक्षण और जल संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झीलें केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि जैव विविधता, भूजल और पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। बढ़ता प्रदूषण, कचरा, अतिक्रमण झीलों के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रहे हैं और ऐसे में झीलों में कूड़ा ना डालना, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना और स्थानीय स्तर पर उनके संरक्षण में सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो झीलों को बचाएं, जल बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित बनाएं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी झील के उस पार। और दोस्तों, हर शख्स किसी ना किसी हुनर का हुनरमंद होता है, ये हम सभी जानते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा या कौशल होता है, और सही दिशा, प्रशिक्षण और नए अवसर उस हुनर के जरिए स्वरोजगार, उद्यमिता के नए रास्ते खोल सकते हैं। आज ऐसे बहुत से हुनरमंद लोग हैं जिन्होंने कड़ी लगन और मेहनत के जरिए ये साबित कर दिखाया कि ऊंचा उड़ने के लिए सिर्फ पंख काफी नहीं, बल्कि हिम्मत, ताकत और विश्वास भी जरूरी है। तो बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपना खाना बनाने के एक छोटे से कौशल को एक नई पहचान देकर अपना स्वयं का खाद्य उद्यम स्थापित किया। मणिपुर की यांगमिला जिमिक, जिनका जीवन संघर्ष की कहानी बयां करता है। एकल माँ के रूप में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए यांगमिला ने स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, और 2015 में मात्र 500 रुपए के छोटे से निवेश से उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करते हुए घर पर ही आंवले की कैंडी और जैविक अचार बनाना शुरू किया। उनके उत्पाद स्थानीय स्तर पर खूब लोकप्रिय हुए। आज उनकी कंपनी 35 से ज्यादा प्रकार के जैविक उत्पाद बेचती है और स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी देती है, और 100 से अधिक किसानों से फल प्राप्त करती है। यानी कि उन्होंने किसानों को भी काम देना शुरू कर दिया है, उनकी खेती से उत्पादित होने वाले फलों को अपने व्यवसाय से वो जोड़ रही हैं, ले रही हैं। तो देखा, छोटी सी कोशिश कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। तो अगर आप में भी किसी तरह का हुनर है तो बस जुट जाइए उस हुनर को नई पहचान देने के लिए, क्योंकि आज अनेक रास्ते हैं आपके हुनर को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए।

ये थे भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर, और फिल्म थी सितारा। और श्रोताओं, जो हमने प्रश्न पूछा था उसके जवाब हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले जवाब आया है हमारे पास नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी है एक दूसरे को समझ

ना, अगर कभी अपना मूड ऑफ है तो सामने वाले को धैर्य रखना चाहिए, कभी उनका मूड खराब है तो खुद को संयम रखना चाहिए। भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती है, रिश्तों में जो ये एडजस्टमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात कही नवीन जी आपने। और अगला जो जवाब हमारे पास आया है वो योगराज सहगल जी का आया है, वो दिल्ली बुराड़ी से लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में उनका मानना है कि सबसे ज्यादा रिश्तों को बनाने के लिए उन रिश्तों को समय देना और बातचीत करना ही अहम भूमिका निभाता है। भाई वाकई ही, अगर आप रिश्तों को समय नहीं देते या उनमें संवाद की कहीं कमी रख लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दूरियां बनने लगती है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत अहम बात है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अफरोज शेख जी लिख रहे हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है बड़ों का ध्यान रखना। भाई वाह, और बड़ों का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ ही अपना भी ध्यान रखना और उन सबका ध्यान रखना जो आपके अपने लोग हैं, यानी कि आपके जो घर के सदस्य हैं, सबका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है रिश्तों को संभालने और सहेजने के लिए। चरणदास जी कहते हैं कि मोबाइल से नहीं, आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, प्यार बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। और जमाना भी, वो जमाना भी देखा है। वो कहते हैं कि पूरी रात रिश्तेदारों के साथ बात करते थे, बस में चढ़ाने आते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। आज इंसान भौतिक वस्तुओं के पीछे ज्यादा भाग रहा है और अपने अंदर की संवेदनाओं को महसूस करना होगा। राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी, ये हिसार हरियाणा से लिख रहे हैं। तो देखिए, बात तो सही है ही है, क्योंकि डिजिटल दौर में हम देखते हैं कि हर आदमी अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठा है। तो मोबाइल को थोड़ा सा छोड़कर अपनों के साथ बात करना, संवाद करना बहुत ज़रूरी है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक टिकाऊ जीवन शैली की। जब हम टिकाऊ जीवन शैली के बारे में सोचते हैं तो श्रोताओं देखिए, मन में ख्याल आता है कि जीवन में बड़े बदलाव करने होंगे, आदतों को बदलना पड़ेगा या फिर लाइफ स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये सब सोचकर लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आपकी हमारी उन छोटी छोटी आदतों से जुड़ा है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकती है। ज़रूरत है बस एक जिम्मेदारी की, जैसे कमरे से या लिफ्ट से बाहर निकलते समय लाइट फैन को बंद करना ना भूलें, ज़रूरत नहीं है तो पानी को व्यर्थ ना बहने दें। भाई ये हम सभी जानते हैं, कभी कभी थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शॉपिंग पर जा रहे हैं तो कपड़े का थैला घर से ही लेकर जाएं। आज भले ही पेपर बैग्स मिलने लगे हैं, पर कपड़े का जो बैग होता है ना, वो वॉशेबल भी होता है और टिकाऊ भी होता है। बात अगर खाने की करें तो खाना खाते समय उतनी ही मात्रा में भोजन लें जितनी वास्तव में आपको ज़रूरत है, यानी कि आप अपनी प्लेट को भर ना लें, जितनी ज़रूरत है आप उतना लें। और अगर भूख है तो आप सेकंड फिलिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बार ज़्यादा लेने से होता है क्या है कि कभी कुछ अच्छा नहीं लगा या पेट भर गया तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी बर्बादी होती है, तो उसका ध्यान रखना है। और बात खरीदारी की करें तो ये भी हमारी टिकाऊ जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। हर चीज़ केवल इसलिए खरीदना ज़रूरी नहीं है कि वो नई है, ज़रूरत के अनुसार खरीदना, टिकाऊ वस्तुओं को प्राथमिकता देना और जिन चीज़ों का उपयोग हो सकता है उन्हें तुरंत कचरे में ना डालें, यही तो संसाधनों की बचत करता है। तो भैया ऐसे में कम उपयोग, दोबारा उपयोग और पुनर्चक्रण जैसी आदतों को शामिल किया जा सकता है। पुरानी बोतल, डिब्बे या कपड़े कई बार उपयोग में आ सकते हैं, इससे कचरा भी कम होगा और अनावश्यक खरीदारी भी। तो आज से ही ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएं, अच्छी आदतें अपनाएं और ऐसी जीवन शैली का निर्माण करें जो हमारे लिए भी बेहतर हो और हमारी प्रकृति के लिए भी। ये वाकई एक समझदार तरीका है जीवन को बेहतर।

ज़मीन आसमान। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और जो श्रोता थोड़ा सा लेट जुड़े हैं कार्यक्रम घर आंगन से, उनके लिए मैं प्रश्न आज का जो है एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, और मुझे रहेगा आपके सवालों, इस सवाल पर आपके जवाबों का इंतज़ार। तो जो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। जी हाँ, आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको हमें इसका जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर। और इसी दौरान हमारे पास एक जवाब आ चुका है, वो हमारे को लिख रहे हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से। वो कहते हैं कि प्रतिभा बेटा राम राम, अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे समय में इतने साधन नहीं थे, फिर भी जो खुशी मिलती थी वो आज के समय में नहीं है। लोग आपस में मिलकर मन की बात करते थे, शरीर की बीमारियां भी दूर होती थी, इतनी खुशी मिलती थी। तो शुक्रिया गौरी शंकर जी। और देखिए, बात सही भी है कि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है ना आज के जीवन में कि समय नहीं है, तो थोड़ा सा हमें भी समझने की ज़रूरत है, अपने लिए, अपनों के लिए वक्त निकालें। बिल्कुल। और अब चलते हैं बचपन की ओर। तो अगर हम बचपन की यादों में जाते हैं ना, तो चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट जैसे कुछ नाम याद आते हैं, और समय के साथ साथ जो है ना इनकी यादें वो धुंधली पड़ने लगी है, क्योंकि ज़माना डिजिटल दौर में जो आप पहुँचा है, अब डिजिटल मैसेज और ईमेल आ गए हैं और हमारा पोस्ट बॉक्स खाली रहने लगा है। अब हम अपना चैट बॉक्स और मैसेज बॉक्स देखने लगे हैं, पर डाक सेवा तो भाई अडिग थी और अडिग रही। समय के साथ साथ हमारी डाक सेवा ने कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया। आज डाकघर की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में भारतीय डाक ने डाक सेवा ऐप को विकसित किया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डाकघर से जुड़ी जरूरी जानकारी और कई सेवाएं मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। ऐप को डाक विभाग के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी कि CEPT ने विकसित किया है, और डाक सेवा ऐप के जरिए उपभोक्ता अपने डाक, लेख, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पार्सल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी कि EMO जैसी सेवाओं की स्थिति मोबाइल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा नज़दीकी डाकघर की जानकारी हासिल करने, पोस्टेज यानी डाक शुल्क की गणना करने और शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति देखने जैसी सुविधाएं भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की उपलब्ध सुविधाओं में शिकायत प्रबंधन, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और बचत योजनाओं से संबंधित ब्याज कैलकुलेटर भी शामिल है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है, वो ये है कि भाषा अवरोध को दूर करने के लिए जो ये ऐप है वो भाषणी प्लेटफॉर्म के जरिए 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ना मजेदार बात। तो कुल मिलाकर डाक सेवा ऐप ने डाकघर की कई सूचनात्मक और सेवा संबंधी सुविधाओं को स्मार्टफोन तक पहुंचाने का रास्ता आसान कर दिया है। पार्सल की स्थिति देखने से लेकर नज़दीकी डाकघर खोजने, शुल्क का अनुमान लगाने और शिकायत दर्ज करने तक कई काम अब मोबाइल के जरिए किए जा सकते हैं। इससे आम नागरिकों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और नियमित डाक उपयोगकर्ताओं को समय बचाने में मदद मिल सकती है। तो अब आप अपना डाकिया खुद बनकर पोस्ट ऑफिस के काम स्वयं अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आए दिन बहार के। और श्रोताओं, जब हम दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हैं तो हम सबसे पहले सुनते हैं कि दिल्ली मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। ये लाइन आप सभी और हम सभी मेट्रो के सफ़र के दौरान सुनते हैं। वाकई दिल्ली मेट्रो का सफ़र आरामदायक होने के साथ साथ हमारे समय को भी बचाता है। हम सभी आभारी हैं इस सेवा के, जिसने लंबे ट्रैफिक जैम को कम करने की कोशिश की, जिसने हमारी यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज दिल्ली मेट्रो सेवा दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क में शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के अनुसार 2026 में दिल्ली मेट्रो ने 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी दर्ज की है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में ट्रेन के अपने निर्धारित समय 59

सेकंड से ज्यादा देरी होने पर ही उसे विलंब माना जाता है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो प्रणालियों में 2 से 5 मिनट की देरी को सामान्य माना जाता है। इस सख्त मानक के बावजूद दिल्ली ने बड़े बड़े देशों की कई बड़ी मेट्रो सेवाओं को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब 416.5 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, जिसमें 303 से ज्यादा स्टेशन हैं। व्यस्त कॉरिडोर पर ट्रेनों के बीच का समय घटाकर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड कर दिया गया है। इससे लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को संभालने में मदद मिल रही है। आज नेटवर्क का लगभग 29% हिस्सा अब अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन यानी ड्राइवरलेस तकनीक से संचालित होता है। श्रोताओं, दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच केवल 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग और 6 स्टेशनों के साथ शुरुआत की थी। आज ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है और इसका नेटवर्क 416.5 किलोमीटर, 12 लाइनों और 303 स्टेशनों तक फैल गया है। इसमें 31 इंटरचेंज स्टेशन हैं जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। पहले रोजाना करीब 82,000 यात्री यात्राएं होती थी, वहीं आज औसतन 64.06 लाख यात्री यात्राएं हो रही हैं। समय की पाबंदी, सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के दम पर आज दिल्ली मेट्रो ने दुनिया की प्रमुख शहरी रेल सेवा में अपनी अलग पहचान बना ली है। और जानते हैं कि खास बात यह है कि आप भी मेट्रो रेल सेवा की प्रगति का हिस्सा हैं, क्योंकि मेट्रो के द्वारा रोजाना अपना सफर एक आराम, सुकून और रफ्तार के साथ आप समय पर जो कर रहे हैं

सवेरे वाली गाड़ी। अभी आप इस फिल्म से गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, हमारे प्रश्न का जवाब आ चुका है। रतलाम मध्य प्रदेश से भंवर धनगर

लिख रहे हैं कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी है समय, विश्वास और संवाद। हर रिश्ता बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से मजबूत होता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना, गलती होने पर माफ करना, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना और बिना मतलब के हाल पूछ लेना। भाई वाकई बहुत सही बात कही आपने। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से लिख रहे हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते बनाए रखने का मूल मंत्र है कि किसी से कड़वा नहीं बोलो। भाई रिश्ते कड़वाहट अगर होती है तो कड़वा बोलो तो कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में, तो उसका ध्यान रखना। और सबसे बड़ी सीख वो ये कहते हैं कि अपनों से हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने।

श्रोताओं, घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं आपसे लूं इजाज़त, लेकिन आपका साथ हमारे लिए हौसला है और हमारे लिए एक सकारात्मकता लेकर आता है। तो इस वादे के साथ फिर किसी और दिन इसी समय पर मुलाकात होगी कार्यक्रम घर आंगन में। तो आज के इस सफ़र में मुझे यानी प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा

0: को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said from sports universities to modern training centers, an ecosystem is being developed across the country where

0: लुटे कोई बातों में, देखे कोई प्यार से।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम, बस तुम।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2001 में रिलीज हुई फिल्म अजनबी के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया है और विजय गलानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर और बिपाशा बसु शामिल हैं। साथ ही जॉनी लिवर, दलीप ताहिल, नरेंद्र बेदी और शरद सक्सेना सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 1992 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म कंसेंटिंग एडल्ट्स का अनौपचारिक रूपांतरण है। यह फिल्म एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है।

श्रोताओं, 21 सितंबर 2001 को जब ये फिल्म अजनबी रिलीज हुई तब फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली, जिसमें अक्षय कुमार और बिपाशा बासु के अभिनय की खूब प्रशंसा की गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रूप से सफल रही और 17 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 31 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला, साथ ही बिपाशा बासु को सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। और श्रोताओं, रही बात इस फिल्म के संगीत की, तो इसे संगीत अनु मल्लिक जी ने दिया है और गीत समीर के लिखे हैं, और फिल्म के सारे गीत आज भी उतना ही पॉपुलर हैं जितना कि पहले था।

श्रोताओं, अजनबी फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो राज यानी बॉबी देओल और प्रिया यानी करीना कपूर शादी के बाद स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक दूसरे इंडियन कपल विक्रम यानी अक्षय कुमार और सोनिया यानी बिपाशा बासु से होती है। देखते ही देखते दोनों जोड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब विक्रम वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नी की अदला बदली का प्रस्ताव रखता है, जिससे राज नाराज हो जाता है। इसके बाद एक सुबह सोनिया मृत पाई जाती है और इसका इल्जाम राज पर आ जाता है। राज अपनी बेगुनाही साबित करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां से भाग निकलता है। कहानी के अंत में विक्रम हिंसक हो जाता है और प्रिया का पीछा करता है ताकि उसे मार सके। राज प्रिया को बचा लेता है और विक्रम और राज की लड़ाई में क्रूज के लंगर से विक्रम की मौत हो जाती है। इसके बाद राज निर्दोष साबित हो जाता है और राज और प्रिया वापस भारत लौट आते हैं।

श्वेताओं, इस फिल्म में विक्रम के नेगेटिव रोल के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद ही ये किरदार अक्षय कुमार को ऑफर किया गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और उन्हें इसके लिए काफ़ी प्रशंसा मिली और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। श्रोताओं, यह फिल्म बिपाशा बासु के लिए भी टर्निंग पॉइंट रही और पहली ही फिल्म में डेब्यू करने के बाद उन्हें पहचान मिल गई।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन में अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत लिए एक आधुनिक खेड प्रणाली बनाने लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। नेपाल में अचानक आए हड़ां च 160 तो वध लोगों की मौत हो गई है। लापता हुए हजारा लोगों च लगभग 300 भारतीय सैलानी शामिल ने। भारत ने नेपाल में हड़ प्रभावित लोगों लिए 37 टन तो वध मानवीय सहायता ते राहत समग्री की दूजी खेप भेजी है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज अहमदाबाद च 2030 राष्ट्रमंडल खेडां दीआं तैयारियां दी समीक्षा करनगे। केंद्रीय वाणिज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैमी कंडक्टर इलैक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जियां अते स्टील निर्माण दे खेतर च भारत जापान सांझेदारी वधाउण बारे चर्चा कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत लिए एक आधुनिक खेड प्रणाली बनाने लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेड यूनिवर्सिटियां

आदाब, ये आकाशवाणी है जमीन। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के क़याम के तई अहद बस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहती साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे के खातिर मुजाकिरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में जारी दूसरे और

0: आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने भारत पर 146 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का जदीद इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकिस तक पूरे मुल्क में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर तआवुन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहद करने का एक मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर ज़िले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सयाह भी शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल 3 जिलों में बोडेक्शी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू हुआ यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पन बिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल की कुदरती आफात से निमटने वाली कौमी अथॉरिटी ने बताया कि नेपाल तिब्बत सरहद पर लेंडे नदी के तुगयानी में रसुआ जिले के तिमूर में भोतेकुशी होता हुआ तिरुशी दरिया में यह सैलाब दाखिल हुआ। इसके बाद ये दरिया के रास्ते दीगर जिलों में दाखिल हो गया। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए हैं जबकि 265 लापता हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचा लिया गया है। इनमें 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जेर इलाज हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बालेंद्र शाह से फ़ोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएँ और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन साजो सामान और जरूरी दवाएं रवाना की थीं। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। बीजिंग में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम अज़ कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों के सयाह लापता बताए जाते हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स शामिल हैं। इधर कुदरती आफात से निमटने की कौमी फोर्स NDRF ने आज कहा कि नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। ताहम बिहार और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल के साथ सूरत हाल पर लगातार निगाह रखी जा रही है। NDRF के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों रियासतों में NDRF की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 11 टीमों को उत्तर प्रदेश और 9 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। ये टीमें सैलाब या पानी भर जाने की सूरत में इनखिला, राहत और बचाव कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने

0: फोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: पड़ोसी मुल्क नेपाल के कई जिलों में तबाहकुन सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। बिहार हुकूमत ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक नदी से मुत्तसिल जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने नेपाल में फंसे लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। भारत 18वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद की जाएगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों और शराकतदार और मधु मुमालिक के लीडरान शिरकत करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत की थीम लचक के लिए तामीर, इख्तरा, तावुन और पायदारी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंसानियत पहले के जज्बे पर मबनी अवाम मरकूज विजन की अक्कासी होती है। इसके अलावा लीडरान ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मुश्तरक तरजीहात पर तावुन को बढ़ाने पर अपने तबादले ख्याल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते और इतवार के रोज शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रा वक्त की हद नहीं है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इक़्तिसादी मुश्किलात की जानिब इशारा किया। इस दौरान खतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भारत के खिलाफ 146 रन की सबकत बना ली है। श्रीलंका की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 8 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के क़याम के तई अहदबस्ता है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहत की साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second.

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर

0: आज पॉट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
0: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को

0: को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +977-985-131-6807 और +977-970-910-7500। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी

0: क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम प्रस्तुत है एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ ये कार्यक्रम लेके, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें किसी एक किरदार, किसी एक दौर या किसी एक पहचान में बांधना मुश्किल हो जाता है। कभी चुलबुली लड़की, कभी शानदार डांसर, तो कभी कॉमेडी के रंग में रंगने वाली, कभी खलनायिका के रूप में दिखाई देने वाली और कभी माँ की ममता के रूप में, और कभी ऐसे चरित्र अभिनेत्री जिसकी मौजूदगी से पूरा जो फिल्म का सीन होता है वो यादगार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक बहुमुखी अदाकारा की जिनका नाम है अरुणा ईरानी। दोस्तों, अरुणा ईरानी का फिल्मी सफ़र बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ था। 1961 में फिल्म गंगा जमुना में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उस समय उनकी उम्र करीब 9 वर्ष रही होगी। इसके बाद अनपढ़, जहां आरा, फर्ज, उपकार और आया सावन झूम के जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े किरदार निभाए। यानी जिस उम्र में बच्चे स्कूल की दुनिया में होते हैं ना दोस्तों, वो कैमरा के सामने अपनी पहचान बनाना

दोस्तों, साल था 1971 और फिल्म आई थी कारवां। वैसे तो फिल्म में थे आशा पारेख और जितेंद्र, लेकिन अरुणा ईरानी ने भी अपने डांस और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का इतना ध्यान खींचा था दोस्तों कि शायद हीरो हीरोइन को तो सभी याद रखते हैं, लेकिन उस फिल्म में अरुणा ईरानी को बहुत याद रखा गया था। और खासकर गीत चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, अरुणा ईरानी को एक अलग पहचान मिली इस फिल्म से। इन गीतों में उनका जो डांस था, उनका अंदाज और कैमरे के सामने उनकी जो ऊर्जा, आज भी याद की जाती है। कारवां उनके करियर के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक गिनी जाती है।

दोस्तों, ये वही दौर था जब अरुणा ईरानी सिर्फ सहायक अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि वह अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं। अरुणा ईरानी के करियर का एक दिलचस्प अध्याय है महमूद जी। जी हाँ, उनके साथ उनका काम। दोनों ने औलाद, हमजोली, जवाब, मन मंदिर, नया जमाना जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। महमूद की कॉमेडी और अरुणा ईरानी की सहज अभिनय शैली ने कई फिल्मों के दृश्यों को यादगार बना दिया था। साथ ही उनकी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ कॉमेडी और डांस का भी एक खास स्थान रहता था।

दोस्तों, अगर अरुणा ईरानी की स्क्रीन इमेज की बात हो जाती है तो संगीत की बात ना हो तो बात अधूरी ही रह जाती है। बात करें 70 के दशक की फिल्मों की, तो एक तरफ रोमांस था, दूसरी तरफ एक्शन बढ़ रहा था। कॉमेडी का अपना मजबूत स्थान था और चरित्र भूमिकाएं भी तेजी से महत्वपूर्ण हो रही थीं। इसी दौर में अरुणा ईरानी ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, जैसे बॉम्बे टू गोवा में, गरम मसाला में, दो फूल, बॉबी और फकीरा, सरगम जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी दिखाई दी। खास बात यह थी कि वह किसी एक तरह की भूमिका में सीमित नहीं रहीं। कभी डांस, कभी हास्य, कभी गंभीर और कभी एक नकारात्मक शेड में।

0: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।
1: दोस्तों बात करें 1973 की फिल्म बॉबी, तो हिंदी सिनेमा की बेहद लोकप्रिय फिल्म थी ये। राज कपूर की इस फिल्म में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की प्रेम कहानी केंद्र में थी, लेकिन फिल्म के सहायक कलाकारों में थी अरुणाई रानी। यही अरुणाई रानी की खासियत थी कि वह फिल्म में मुख्य नायिका ना होकर भी अपनी उपस्थिति उस फिल्म में और दर्शकों के बीच दर्ज करा देती थी।

0: मैं दुश्मन तो नहीं।
1: दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी एक भूमिका में बांध कर रहना नामुमकिन है, उनके लिए बस इतना ही कहना काफी होगा। चेहरा भले ही हर फिल्म में अलग था, लेकिन अभिनय की पहचान हमेशा वही रही

इसी गीत के साथ आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप अब अपनी दोस्त शिल्पा को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। अश्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़ का। जी हाँ साथियों, और आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त शिल्पा। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का सफ़र थोड़ा सा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन गानों की जिन्हें सुनने के लिए ना किसी प्लेलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक गाना बजा और पूरा माहौल बदल जाता है। जी हाँ साथियों, आज हम लौटेंगे बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर में, वो दौर जब गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, गुनगुनाए जाते थे, याद किए जाते थे, और कभी कभी तो किसी खास इंसान की याद में बजाए जाते थे और उसकी याद भी दिलाई जाती थी उन गानों के थ्रू।

वाह साथियों, क्या मेलोडी थी और क्या आवाज़। दोस्तों, ऐसे गाने सुनकर लगता है कि उस दौर में प्यार जताने के लिए ना बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। एक नज़र, एक मुस्कान और एक गीत, और यही तो खासियत थी हमारे 60s के म्यूज़िक की। सादगी थी लेकिन फीलिंग्स बहुत गहरी थी।

और सच बताइएगा दोस्तों, क्या पुराने गाने सुनते हुए आपको भी कभी अपने घर के पुराने रेडियो की याद आती है? वो रेडियो दोस्तों जिसके पास हमारा पूरा परिवार बैठ जाता था, किसी को गाना पसंद आता था और किसी को नहीं आता था, लेकिन फिर भी रेडियो बंद नहीं होता था। साथियों, अब बारी है एक ऐसे गाने की जिसने रोमांटिक बॉलीवुड म्यूजिक को एक अलग पहचान दी। किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना का वो अंदाज, लीजिए सुनते हैं।

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो

दोस्तों अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं, डांस से निकलकर चलते हैं रोमांस की तरफ। और जब बात होती है रोमांस की, तो किशोर कुमार की आवाज़ अपने आप हमारे कानों में गूंज उठती है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो समय के साथ पुरानी नहीं होती। किशोर कुमार की आवाज़ भी उन्हीं में से एक है। और 70 में उनके जो गाने थे लाखों लोगों की लव स्टोरीज़ की आवाज़ बन चुके थे।

दोस्तों, एक ऐसा गाना जो जिंदगी को एक सफर की तरह देखता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल, लेकिन सफर चलता रहता है। क्या खूबसूरत बात कही गई है जो अभी हम आपको गीत सुनवाएंगे। उसमें जिंदगी सच में एक सफर ही तो है, और इस सफर में कुछ लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं और कुछ लोग थोड़ी दूरी, मतलब दूर चले जाते हैं, और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं।

दोस्तों, अब एक ऐसी मेलोडी सुनते हैं जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है और एक अधूरी सी कहानी भी है।

दोस्तों, अब इस खूबसूरत गीत के साथ ही मुझे यानी अपनी दोस्त शिल्पा को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब कार्यक्रम है, प्रस्तुत है उर्दू मजलिस।

0: और फलसफियाना गहराई एक साथ मिलती है। वो उर्दू गजल को महज इश्किया जज्बात का इजहार नहीं समझते थे, बल्कि उसे इंसानी तजुर्बात और कायनाती सवालात का आईना बनाते थे। जैसे बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक बड़े नक्काद भी थे। उन्होंने उर्दू शायरी को जमालियाती और फिक्री बुनियादों पर परखा। उनकी तनकीद में जबान की नज़ाकत, फ़न की बारीकियाँ और अदब की गहराई नुमाया हैं। जनाब अनस फैज़ी, जो बजाते खुद शायर हैं, फिराक के मुतालिक क्या कहते हैं, समात कीजिए।
1: देखिए, फिराक गोरखपुरी का नाम आते ही मेरे जहन में सबसे पहले एक ऐसी शायर की तस्वीर बनती है जो मोहब्बत को सिर्फ महबूब और आशिक के दरमियान का मामला नहीं समझता, बल्कि मोहब्बत को पूरी इंसानी जिंदगी का एक तज्जिया समझता है। फिराक की शायरी में एक अजीब सी कुशादगी है। वहाँ इश्क भी है, हुस्न भी है, हिजर भी है, तन्हाई भी है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान की मिट्टी, यहाँ के मौसम, यहाँ की रातें, यहाँ की खुशबू और यहाँ की तहजीब भी मौजूद है। मुझे फिराक की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि वो बहुत मुश्किल बात को भी बड़े नर्म और सादा अंदाज में कह देते हैं। उनके यहाँ अल्फाज शोर नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरते हैं। और एक बात बहुत अहम है कि फिराक ने उर्दू गजल को सिर्फ रिवायत के सहारे नहीं चलाया, उन्होंने इस रिवायत में अपने जमाने के इंसान को शामिल किया और एक नई गजल से रोशनास कराया। यानी एक ऐसा इंसान जो मोहब्बत में तन्हा भी रहता है, किसी को याद भी करता है, वो सवाल भी करता है और जिंदगी को समझने की कोशिश भी करता है। फिराक को पढ़ते हुए मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि वो महबूब से कम और जिंदगी से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। शायद यही वजह है कि फिराक गोरखपुरी आज भी हमारे लिए सिर्फ एक शायर नहीं, ऐसी आवाज है जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब, इंसानी मोहब्बत और जदीद एहसास तीनों एक साथ सुनाई देते हैं। उनका एक शेर है, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। देखिए, बजाहिर कितना सादा शेर है, लेकिन इसमें जो कैफियत है, कुर्बत के बावजूद गुफ्तगू न कर पाने की कैफियत, यही फिराक की शायरी का कमाल है। वो मामूली से लम्हे को भी एक यादगार शेरी तजुर्बा बना देते हैं। मेरे ख्याल में फिराक को समझने के लिए सिर्फ उनकी गजलें पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उनकी शायरी को महसूस करना पड़ता है, क्योंकि फिराक की शायरी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।
0: सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। फिराक की शायरी में फलसफा और जमालियात का इम्तिजाज नुमाया है। फिराक गोरखपुरी ने उर्दू गजल को हुस्न और इश्क की नई तस्वीरें अता की। उनके कलाम में रंग, खुशबू और मंजर निगारी की भरपूर झलक मिलती है। वो लफ्ज़ों को इस तरह बरतते हैं कि सामे या कारी एक जमालियाती दुनिया में दाखिल हो जाता है। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी। जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीजगी निखर आई। अक्सर लोग फिराक को सिर्फ इश्क और जमालियात का शायर समझते हैं, मगर उनके कलाम में इंसान दोस्ती और समाजी शऊर भी मौजूद है। तुम इसे शिकवा समझकर किस लिए शर्मा गए, तुम इसे शिकवा समझकर किस लिए शर्मा गए, मुद्दतों के बाद देखा था तो आंसू आ गए। फिराक के वसल का तसव्वुर दो जिस्मों का नहीं, दो जहनों का मिलाप है। वो कहा करते थे कि उर्दू अदब ने अभी तक औरत के तसव्वुर को जन्म नहीं दिया। उर्दू जबान में शकुंतला, सावित्री और सीता नहीं। जब तक उर्दू अदब देवियत को नहीं अपनाएगा, उसमें हिंदुस्तान का उंसुर दाखिल नहीं होगा और उर्दू सकाफती हैसियत से हिंदुस्तान की तर्जुमान नहीं हो सकेगी। फिराक की शायरी में एक बड़ी खूबी और खसूसियत यह है कि उन्होंने आलमी तजुर्बात के साथ साथ तहजीबी कदरों की अजमत और अहमियत को समझा और उन्हें शेरी पैकर अता किया। फिराक के शेर दिल पर असरअंदाज होने के साथ साथ दावत फिक्र भी देते हैं और उनकी यही सिफत फिराक को दूसरे तमाम शोरा से मुमताज करती है। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों।

0: जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। नून मीम राशिद, जिसे दुनिया शायर, प्रोग्रामर, सहाफी और नसर निगार के तौर पर जानती है, उनके मुतालिक कुछ गुफ्तगु करें। नून मीम राशिद यकुम अगस्त 1910 को सियालकोट पंजाब, मौजूदा अलीपुर जट के खुशहाल घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम राजा फजल इलाही चिश्ती था, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। उन्होंने उसी कस्बे के गवर्नमेंट स्कूल से 1926 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। घर में शेर व शायरी का चर्चा था। दादा जो पेशे से डॉक्टर और सिविल मिलिट्री सर्जन थे, उर्दू और फारसी में शेर कहते थे और वालिद भी शायरी के दिलदादा थे। राशिद को बचपन से ही शायरी का शौक पैदा हो गया। 7-8 साल की उम्र में उन्होंने पहली नज्म इंस्पेक्टर और मुखिया लिखी। इस नज्म में उस इंस्पेक्टर का खाका उड़ाया गया जो उनके स्कूल में मुआयने के लिए आया था। इस नज्म के लिए बाप ने उनको 1 रुपया इनाम दिया। दादा भी खुश हुए, लेकिन शायरी से दूर रहने की ताकीद भी की। शुरू में राशिद ने कुछ हमदे और नाते भी लिखी जो गुमनाम रिसालों में शाये हुई। राशिद के वालिद खुद शेर कम कहते थे, लेकिन हाफिज, सादी, गालिब और इकबाल के शैदाई थे। उनकी बदौलत राशिद को उर्दू फारसी के बड़े शायरों के कलाम से आगाही हुई। राशिद स्कूल के जमाने में अंग्रेजी के शायरों से भी मुतासिर हुए और उन्होंने मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और लॉन्ग फेलो की बाज नज़मों के तर्जुमे किए और स्कूल की अदबी महफिलों में पढ़कर इनाम के हकदार भी बने। जनाब मुइन शादाब, जो बजाते खुद एक मारूफ शायर हैं, वो कहते हैं,
1: नून मीम राशिद उर्दू शायरी का एक रोशन बाब हैं। उनका शुमार आजाद नज्म के मेमारों में होता है। उन्होंने नज्म को महज अल्फाज की तरतीब नहीं रहने दिया, बल्कि उसे फिक्र, एहसास और जिंदगी के गहरे सवालात की आवाज बना दिया। उन्होंने रिवायत से हटकर आजाद नज्म को एक नई वसत अता की और जदीद इंसान की आजादी, तन्हाई, दाखली कशमकश और इसी तरह के दूसरे मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया। नून मीम राशिद सिर्फ एक बड़े शायर ही नहीं, एक वसीउल मुताला और साहिब फिक्र अदीब भी थे। जदीद फारसी शायरी से उनकी गहरी वाबस्तगी थी और तर्जुमे और तनकीद के मैदान में भी उन्होंने अपनी इल्मी सलाहियतों का इजहार किया। उनके तमाम तर शेरी मजमुए और उनकी दीगर किताबें उर्दू नज्म को एक नया लहजा, नई फिक्र और नई शिनाख्त अता करती हैं।
0: उन्हें लफ्जों का मुजस्मा साज भी कहा जाता है। उन्होंने खुद अपने मुतालिक कहा था, मेरे नजदीक शायरी महज अस्वात या अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि दूसरों के इफकार में हैजान पैदा करने का नसर से मौसर तर जरिया है। नून मीम राशिद का शेरी मिजाज रूमी, इकबाल, दांते और मिल्टन जैसे शोरा से मिलता है, जो एक खास सतह से नीचे नहीं उतरते, क्योंकि वो जिन मसाइल और मौजूआत से दोचार हैं वो उन उमूमी मसाइल और कैफियत से मुख्तलिफ हैं जो गनाई शायरी में तनवो, लोच और लचक पैदा करते हैं। मौजूदा अहद में उर्दू अदब के मारूफ नक्काद मुहक्किक प्रोफेसर इर्तजा करीम उनके मुतालिक कहते हैं,
2: नून मीम राशिद, जिनका असल नाम नजर मोहम्मद राशिद था, लेकिन शेरी रिवायत के हिसाब से उन्होंने अपना तखल्लुस या अपने नाम को मॉडरेट करके नून मीम राशिद रख लिया। 2026 के साल में उनकी पैदाइश पे तकरीबन 116 साल गुजर चुके हैं, यानी वो 1910 में उनकी पैदाइश हुई थी। उनका इंतकाल 1975 के आसपास हुआ है, तो उनकी वफात पर भी 51 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनकी शायरी की जो अहमियत है वो आज भी बाकी है और आइंदा भी बाकी रहेगी, ऐसी तवक्को हमें रखनी चाहिए। वो इस बुनियाद पर कि जब भी उर्दू नज़्म की रिवायत पर और उसकी तारीख पर और उसके इर्तिका पर रोशनी डाली जाएगी, तो बिला मुबालगा कहा जा सकता है और कहा जाएगा कि नून मीम राशिद जदीद उर्दू नज़्म के मेमार थे और हैं, क्योंकि उनसे पहले जो जदीद उर्दू शायरी हो रही थी या उर्दू नज़्म कही जा रही थी उसमें रिवायती उसलूब था, रिवायती मौजूआत थे, लेकिन नून मीम राशिद जब उर्दू नज़्म के हवाले से अपनी इंट्री लेते हैं तो एक लख्त जो है नज़्म के डिक्शन में, नज़्म के आहंग में, नज़्म के रिवायती उसलूब में, नज़्म के रिवायती मौजूआत में एक ख़ास किस्म की तब्दीली का अंदाज़ा हो जाता है।

0: कल से 20वीं सदी के ज़माने में जो अहम शोरा हमारे सामने आए जदीदुल नज़्म के ताल्लुक से, उनमें नूम मीम राशिद मीरा जी और दूसरे जो शोरा हैं जो जदीदियत के ज़ेर असर जिन्होंने शायरी की, उनका जो शेरी बर्ताव है, उनका जो शेरी रवैया है, वो पिछलों से मुख्तलिफ था और उन्होंने उर्दू नज़्म को एक फिक्री गहराई दी। आज़ाद हयात की तरफ उनका रुझान रहा। फर्द माशरा तहजीब इंसानी नफसियात की गिरह कुशाई की तरफ उन लोगों ने तवज्जो की। चुनांचे जब हम नूम मीम राशिद की नज़मों की तरफ देखते हैं, उनकी शायरी की तरफ गौर करते हैं, तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उनके यहाँ रिपीटेड आते हैं, तकरार के साथ आते हैं और उनका एक ख़ास मफहूम भी है, जैसे रात औरत सहरा चराग मर्द जिस्म जंजीर वजूद, ये सब ऐसी अल्फाज हैं जो नूम मीम राशिद की शायरी में तवातुर के साथ आते हैं और वो अपनी एक ख़ास मानवियत देते हैं। पुराने जो मफाहिम थे इन अल्फाज के, उनको बदलने की कोशिश में जो है नूम मीम राशिद कामयाब नज़र आते हैं। उनके जो चार मजमूए हैं, मावरा, ईरान में अजनबी, ला बराबर इंसान, फिर गुमान का मुमकिन, आखिरी दो जो मजमूए हैं ये ला बराबर इंसान, ये उन्वान ही जो है किताब का, ये उन्वान ही अपने आप में बहुत मानवियत और आफाकियत रखता है। इस उन्वान को खोलने की कोशिश करें, इसकी तफहीम और मफहूम पर गौर करने की कोशिश करें, तो ला यानी नहीं और उसके बराबर में इंसान यानी वजूद है भी और वजूद नहीं भी है। ये अगर आप इस उन्वान से बहस करना चाहें तो बहुत देर तक बहुत बहस हो सकती है। इसी तरह का उन्वान है गुमान का मुमकिन। अब तसव्वुर कीजिए, गुमान का मुमकिन जैसा उन्वान रखना किसी शेरी मजमूए का या अपनी नज़्म का, ये अपने आप में ये बताता है, ये दिखाता है कि जो शायर है वो बहुत गौर व फिक्र का आदी है, वो गहराई से सोचता है। नतीजा यही है कि नूम मीम राशिद हमारे यहाँ एक जदीद उर्दू नज़्म के मेमार के हवाले से एक बहुत तवाना आवाज़ नज़र आते हैं उर्दू शायरी में। राशिद की शायरी की तफहीम और किरत आसान नहीं है। इसको खोलने के लिए जिस तनकीदी बसीरत की ज़रूरत होती है, उसमें इंसान के बातिन में उतरना होता है। उनकी फिक्री कुशादगी और गहराई को समझने के लिए तारीख के साथ साथ इंसानी जज्बात, जदीद फर्द की दाखली कायनात और वजूद की पेचीदगियों तक रसाई ज़रूरी है। यहाँ हम लोग राशिद और मीरा जी का तकाबली मुताला भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये वक्त उसके लिए मुनासिब नहीं है। मीरा जी भी जदीद शायरी के हवाले से एक अहम नाम है, लेकिन उनके मौजूआत और उनके आहंग और उनके उसलूब और नूम मीम राशिद के उसलूब और आहंग में और मौजूआत में ज़रा फ़र्क नज़र आता है।
1: मई 1939 में उनका तकर्रुर ऑल इंडिया रेडियो में बतौर न्यूज़ एडिटर हुआ और इसी साल प्रोग्राम असिस्टेंट बना दिए गए। फिर उन्हें डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम के ओहदे पर तरक्की दी गई। 1941 में उनका तबादला दिल्ली कर दिया गया। राशिद खासे दुनियादार और होशमंद आदमी थे। रिवायती शायरों जैसी दूरदेशी या लाओबालीपन से उन्हें दूर का भी वास्ता नहीं था। 1952 में वो अक्वामे मुत्तहिदा में शामिल हुए और न्यूयॉर्क, जकार्ता, कराची और तेहरान में अक्वामे मुत्तहिदा के शोबे इत्तलात में काम करते रहे। नून मीम राशिद का इंतकाल 1975 में दिल की हरकत रुक जाने से इंग्लैंड में हुआ और तदफीन कहीं नहीं हुई, क्योंकि उनकी मुबैना वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को सुपुर्द आतिश किया जाना था। हत्ता के बाकायदा तौर पर ताज़ियाती जलसे भी मुनाकिद नहीं हुए। उनका शेर है कि वही मंजिले वही दश्त तो दर तेरे दिल जदो के हैं राहबर, वही मंजिले वही दश्त तो दर तेरे दिल जदो के हैं राहबर, वही आरजू वही जस्तजू वही राह पुर खतर जुनू। सामिने ग्राम, आइए अगले शायर का रुख करते हैं। मैं नजर से पी रहा था तो ये दिल ने बद दुआ दी। मैं नजर से पी रहा था तो ये दिल ने बद्दुआ दी, तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुंचे। मशहूर शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी 3 अगस्त 1916 को मोहम्मद जमील अहमद कादरी सोख्ता के घर पैदा हुए थे। शेर व शायरी का शौक बचपन से ही दामनगीर हो गया था। 1935 में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा बदायूं में मुनक्किद हुआ। उसमें शकील बदायूनी

0: शिरकत की और खूब दाद हासिल की। जाने वाले से मुलाकात न होने पाई, जाने वाले से मुलाकात न होने पाई, दिल की दिल में ही रही, बात न होने पाई। उसी ज़माने में उनकी मुलाकात हज़रत जिगर मुरादाबादी से हुई और इस मुलाकात के बाद उनकी शायरी में इनकलाब आ गया। हज़रत जिगर ने ही उन्हें फिल्मी दुनिया में जाने का मशवरा दिया था। 1942 में दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में महकमा सप्लाई में क्लर्क की हैसियत से मुलाजमत करने लगे। शकील मुशायरे के सिलसिले में जब बम्बई गए, जहां उनकी मुलाकात A.R. कारदार से हुई, उनकी पहली फिल्म दर्द के नगमात ने शोहरत फैलाई और देखते देखते वो सबके पसंदीदा नगमा निगार बन गए। आइए सुनते हैं उनके मुतल्लिक इरफान इलाही जुबैरी, जो एक मशहूर आरजे और शायर भी हैं, क्या फरमाते हैं।
1: हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे शायर और फनकार भी हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में रहते हुए भी अदब को मलहूज़ खातिर रखा, अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उनमें नुमाया नाम हैं कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण और शकील बदायूनी। शकील बदायूनी ने जब शायरी का आगाज़ किया तो उनके हम असर शायर उस ज़माने में पसमानदा लोगों के लिए अपनी शायरी कर रहे थे, लेकिन शकील बदायूनी की शायरी का मौजू था रोमांस और फ़लसफ़ा। यही वजह है कि उनकी फिल्मी नगमों में हमें रोमांस ज़्यादा नज़र आता है। फिल्मी दुनिया में जब गीत लिखने के लिए आए तो पहली मुलाकात कारदार से हुई, A.R. कारदार जो मशहूर फिल्म साज थे, और उन्होंने शकील को मिलवाया नौशाद साहब से। नौशाद साहब ने शकील बदायूनी को परखने के लिए ये कहा कि कुछ लिखकर दिखाइए, तो उसी वक्त शकील बदायूनी ने लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। बस ये सुनते ही नौशाद को इस कदर पसंद आया कि उन्होंने फौरन 1947 की फिल्म दर्द के लिए शकील बदायूनी को बहैसियत नगमा निगार मुंतखब कर लिया। उसके बाद तो नौशाद और शकील बदायूनी का काफ़ी तवील सफ़र रहा, ये सभी जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे नायाब गीत दिए। शकील बदायूनी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने रोमानी नगमे, गज़लें, कव्वालियाँ, भजन, नात सब पर तबाह आजमाई की और जिस चीज़ को भी तहरीर किया लिखा वो इंतहाई खूबसूरत साबित हुई और लोगों को बेहद पसंद आई। शकील बदायूनी ने नौशाद के अलावा हेमंत कुमार, रवि, सी रामचंद्र, SD बर्मन, रोशन, इन सभी के साथ काम किया और इनकी मौसीकी में नगमे लिखे, लेकिन नौशाद से उनका ताल्लुक काफ़ी तवील रहा। यही वजह थी कि हुकूमत हिंद ने सन 2013 में शकील बदायूनी को गीतकार आज़म का खिताब दिया और जब 20 अप्रैल 1970 को 53 साल की उम्र में शकील बदायूनी का इंतकाल हुआ तो उनकी याद में सन 1913 में हुकूमत हिंद ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। शकील बदायूनी ने इंतकाल से पहले अपनी आखिरी गज़ल जो लिखी थी उसके कुछ शेर मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ये उनकी आखिरी गज़ल थी कि जन्नत मिलेगी कूचे हमदम में जाइए, वो भी न मिल सके तो जहन्नम में जाइए। क्यों बन रहे हैं आप फरिश्ता जनाब शेख, इंसान बन के उम्मत आतम में जाइए। मैं रो दिया तो कहने लगे हो कि वो खफा, उठिए यहाँ से महफिल मातम में जाइए। गुंचों को देखना है जो हंसता हुआ शकील, सुए चमन बहार के मौसम में जाइए।
0: शकील ने 100 से ज़्यादा फिल्मों के उर्दू, हिंदी और पूर्वी जबानों में गीत लिखे। शकील बदायूनी ने नौशाद, रवि, हेमंत कुमार, SD बर्मन और सी राम चंद्र जैसे मुमताज़ मौसीकारों के धुनों पर 200 से ज़ायद नगमे लिखे। मदर इंडिया, मुगले आज़म, मेरे महबूब, बाबुल जैसी फिल्मों के खालिक शकील बदायूं ने लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले वाहिद शायर थे। फिल्मी नगमों के अलावा उन्होंने जिंदगी के हर उस पहलू पर शेर कहा है जिस पर शोरा तबा आजमाई करते हैं। उन्होंने इश्क, दोस्त, तसव्वुफ, वहदानियत और शेख पर भी अशार कहे हैं। उनके अशार देखिए कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है।

0: रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। तो शकील बदायूनी का 20 अप्रैल 1970 को मुंबई में इंतकाल हो गया था। मुंबई में ही वो आसूदा खाक हुए मगर शकील बदायूनी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आइए सामईन, आपको एक और शायर के रूबरू कराते हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शेख इब्राहिम ज़ौक 1789 में दिल्ली में पैदा हुए। वो एक आम घराने से ताल्लुक रखते थे लेकिन अपनी सलाहियत और मेहनत के बलबूते पर अदब की दुनिया में बुलंद मकाम हासिल किया। उनके मुतल्लिक जनाब अरशद नदीम, जो एक कोहना मश्क सहाफी और शायर है, कहते हैं,
1: दबिस्तान दिल्ली के मुकम्मल और मुसन्नद शायर ज़ौक की पैदाइश 1790 में दिल्ली में हुई और उन्होंने 1854 में वफात पाई। उनके इब्तदाई उस्ताद गुलाम रसूल शौक थे, बाद में उन्होंने शाह नसीर की शागिर्दी अख्तियार की। शाह नसीर शाह जहीर के शागिर्द थे और शाह जहीर के उस्ताद कायम चांद भी थे, जो मीर तकी मीर के मासी शोरा में से हैं। ज़ौक का असली नाम मोहम्मद इब्राहिम और तखल्लुस ज़ौक था। उन्हें मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की उस्तादी का शरफ हासिल हुआ और दरबार शाही में उन्हें मुलाकुश शोरा का खिताब मिला। ज़ौक ने अरबी फारसी के साथ साथ उर्दू जबान और अदब पर भी गहरी बसरत हासिल की। ज़ौक की सबसे नुमाया अदबी खिदमत उनकी कसीदा निगारी है। उनके दीवान में गजलों के साथ साथ बड़ी तादाद में खुदाई भी शामिल है। उनकी शायरी की खसूसियात में जबान की सफाई, मुहावरे का बरजस्ता इस्तेमाल, अल्फाज की तशबीहात और इशारात की खूबसूरती नुमाया है। उनकी गजलों में हुस्नई जिंदगी, तसव्वुफ और इंसानी जज्बात के मुख्तलिफ रंग भी मिलते हैं। ज़ौक का ये शेर जिंदगी की बेसबाती को नहायत मौसर अंदाज में बयान करता है। लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। आगे फरमाते हैं, क्या देखता है हाथ मेरा छोड़ दे तबीब, यहाँ जान ही बदन में नहीं नब्ज क्या चले। हो उम्र खिज्र भी तो हो मालूम वक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। ज़ौक की शायरी में सादगी के साथ गहरी दानाई भी नजर आती है। यही वजह है कि उनका कलाम आज भी उर्दू अदब के कारीन में मकबूल है। ज़ौक सिर्फ बादशाह के उस्ताद या दरबारी शायर नहीं थे बल्कि वो उर्दू जबान के ऐसे माहिर शायर थे जिन्होंने अपने फन, जबानदानी और कसीदा निगारी के जरिए उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम हासिल किया। यहाँ ये बात भी नोट कर ली जाए कि उर्दू अदब में ये इस वक्त सबसे बड़ा ख़ानदान है वो ज़ौक का है। दाग भी ज़ौक के शागिर्द थे और दाग के शागिर्दों में अल्लामा इकबाल और सिमा अकबर आबादी, जिगर मुराद आबादी समेत बेशुमार शुरा कराम हैं जिन्होंने उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम हासिल किया और अपने ख़ानदानी रिवायात को आगे बढ़ाया।
0: ज़ौक को दिल्ली के मुग़ल दरबार में ख़ास मकाम हासिल हुआ। वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद और दरबारी शायर मुकर्रर हुए। उनके कसीदे और गज़लें दरबार में नहायत पसंद की जाती थीं। उन्होंने कसीदे को महज मदह सराई तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसमें तहजीबी और जमालियाती पहलू भी शामिल किए। उनके कसीदे जबान की चमक दमक और बयान की क़ुव्वत के शाहकार हैं। दरबारी शायरी और कसीदा के मुतालिक डॉक्टर शाहनवाज हैदर ने कहा है,
2: शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक सौदा के बाद उर्दू कसीदा के इमाम सानी तसव्वुर किए जाते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने हक़ शागिर्दी अदा करते हुए ज़ौक को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया और कसीदा में उनकी मुरक्का निगारी को उरूज सफन बताया। नेज आज़ाद ही की रिवायत के मुताबिक 19 वर्ष की उम्र में ज़ौक ने बादशाह सलामत अकबर शाह की शान में एक कसीदा तहरीर किया जिसका मतला था, जबकि सरतानो असद महर का ठहरा मस्कन, जबकि सरतानो असद महर का ठहरा मस्कन, आबो इलूला हुए नशो नुमाए गुलशन। शायर कहता है कि जब सूरज बुर्ज सरतान और बुर्ज असद में क़याम करता है, ये सूरज की गर्मी और साल के गर्म तरीन महीने यानी जून जुलाई और अगस्त का ज़माना होता है जिसमें बरसात का मौसम भी आता है, तो आसमान पर मूसलाधार बारिश होती है और ओले पड़ते हैं। इस बरसात और बारिश के पानी से बाग के फूल और पौधे परवान चढ़ते हैं और ज़मीन में सरसब्ज शादा भी हो जाती है। ज़ौक ने यह कसीदा अकबर शाह की शान में उनकी तारीफ़ व तहसीन में तहरीर की। इस कसीदे में तरह तरह की सनतों के अलावा 18 जुबानों में अशआर शामिल थे। इन जुबानों में उर्दू, अरबी,

0: फारसी, हिंदी, संस्कृत और तुर्की वगैरह शामिल है। अकबर शाह ने ज़ौक़ की शेरी हुनरमंदी और फ़नी दस्तरस से मुतासिर होकर के उनको खाकानी हिंद का खिताब अता किया था।
1: ज़ौक़ की गज़लें इश्किया, जज्बात, नरमी और सादगी से भरपूर हैं। वो मुश्किल अल्फाज और पेचीदा तराकीब से गुरेज करते थे और आम फहम अंदाज में दिल की बात कहते थे। यही वजह है कि उनकी गज़लें अवाम में मकबूल हुईं। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके। तो ज़ौक़ की शायरी की सबसे बड़ी खूबी उनकी ज़बान है। वो सादा, रवां और दिलकश अंदाज में इजहार करते हैं। उनके कलाम में दिल्ली की तहजीब और ज़बान की मिठास झलकती है। उनके अशार को देखिए कि बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बाने खल्क को नकारा खुदा समझो। ये भी शेर देखिए कि मालूम जो होता हमें अंजाम मोहब्बत, लेते न कभी भूल के हम नाम मोहब्बत। ज़ौक़ के ज़माने में गालिब भी मौजूद थे और दोनों के दरमियान अदबी रकाबत मशहूर है। गालिब मुश्किल पसंद और फ़लसफियाना अंदाज के शायर थे, जबकि ज़ौक़ सादगी और अवामी ज़बान के शायर। यही फ़र्क दोनों को अलग अलग पहचान देता है। तो ज़ौक़ की शायरी उर्दू अदब में एक अहम संग मील है। उन्होंने गज़ल और कसीदे को वक़ार बख्शा और ज़बान को सादगी के साथ हुस्न अता किया। ये शेर देखे कि ऐ शमा तेरी उम्र तबई है एक रात, ऐ शमा तेरी उम्र तबई है एक रात, हंस के गुजार या इसे रोकर गुजार दे। तो सामीन कराम, ज़ौक़ ने अवामी ज़बान को शायरी का हिस्सा बनाया और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। उनका शेर देखिए कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। तो सामीन कराम, आज हम अपने इन तमाम उदबा और शोरा को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने उर्दू के चिराग को रोशन किया। जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने। तो सामीन कराम, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा

0: 彩免费的卫星盼声播放的全印度电台的世界广播，
1: 请收听拉维圣克坦钦的西塔尔。

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听扎吉辛格和吉特啊辛格唱的歌曲。

0: 印度德里广播天台听众朋友们，请收听扎吉情歌唱的歌曲。
1: Admi bulbula hai pani ka, aur pani ki behti sathe par tootta bhi hai, doobta bhi hai, phir ubharta hai, phir se behta hai. Na samandar nigal saka isko, na tawareekh tod paayi hai.वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला।

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的 news 歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

印度代理广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影界最佳女配音歌手阿卡亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों से जुड़ा आपका ये मनभावन कार्यक्रम। मैं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं सहयोगी अनु गुप्ता
2: जी। सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
1: अनु, भारत में खेलों का परिदृश्य साल दर साल और बेहतर हो रहा है। प्रदर्शन शानदार है तो प्रोत्साहन में भी कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद के जरिए युवाओं को खेलों में आगे आने का आह्वान किया है। खेलों के जरिए विकास को और भारत विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया है। तो आज के कार्यक्रम में ये खास जो संवाद हुआ है वो आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा बात क्रिकेट की होगी, जहां भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। भारत ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है, क्योंकि पहला टेस्ट भारत ने अपने खाते में दर्ज कर लिया था। और विश्व कप हॉकी पे भी बात होगी, जहां आज सेमीफाइनल महिला वर्ग के खेले जाएंगे और भारत को जर्मनी के साथ खेलना है शाम 6:30 बजे से। 5वें स्थान के लिए है, भारतीय टीम के लिए चुनौती है तो प्रेरणा भी है कि वो अपना दूसरा श्रेष्ठ प्रदर्शन कर ले। और इसके अलावा बात सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की होगी, जहां फुटबॉल का आज जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है उस पर चर्चा देंगे। और TPL पे भी बात होगी, ग्रैंड चेस टूर की भी बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया संवाद पर इस खास रिपोर्ट से।

0: खेल का मैदान सिर्फ जीत और हार का मैदान नहीं होता, यहाँ सपने आकार लेते हैं, हौसले उड़ान भरते हैं और देश का भविष्य तैयार होता है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए माई भारत वॉलंटियर से सीधे संवाद किया। पीएम ने युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, भारत को खेल महाशक्ति बनाने का मूल मंत्र दिया। खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम में 1500 से अधिक संस्थान, 5000 से ज्यादा कॉलेज, 10 लाख से ज्यादा युवा, ओलंपियन, द्रोणाचार्य अवार्डी, खेल जगत के पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल सहयोगी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद जुड़े थे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए उनकी योजनाओं, नीतियों और दूरदर्शिता को सराहा। संवाद के दौरान खेलों की दुनिया में बढ़ते भारत की खूबसूरत तस्वीर भी पेश की गई। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, ये नारा देने वाले पीएम मोदी ने दो दिन बाद आने वाले खेल दिवस के लिए शुभकामनाएं दी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन किया।
1: देश भर के एथलीट और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए। आप सबको पता है साथियों, दो दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन माँ भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी, उनको याद करने का भी अवसर होता। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है। कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था, तब भी मैंने न्यूजीलैंड में उन्हें याद किया था।
0: साथ ही कहा कि नए भारत में देश उन खेलों से भी जुड़ेगा जहां पहले भागीदारी नहीं थी।
1: साथियों, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: पीएम मोदी ने कहा, देश की भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ऐसे खेल केंद्र विकसित करने होंगे जहां युवाओं की इन खेलों में स्वाभाविक रुचि हो सकती है।
1: आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते, और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी, और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीत और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक के लिए डेमोग्राफी भी है, और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके। और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से कहा कि हमें आज से ही शुरुआत करनी होगी। साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने का संकल्प भी दोहराया।
1: साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूँ, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सके। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांग खिलाड़ियों के जज्बे को जिंदगी के लिए बड़ी प्रेरणा बताते हुए शीतल से लेकर अवनी, सुमित और झंडू कुमार के प्रदर्शन को सराहा।
1: पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही के पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है, शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूँ बहुत गर्व महसूस करता हूँ। सुमित अंतिल हो, नितेश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे झंडू कुमार, ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं, ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक बेहतर जीवन की गारंटी है, स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है।
0: पीएम मोदी ने कहा, खेल सिर्फ मैदान पर जीत और हार का नाम नहीं है, खेल अनुशासन सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है और सबसे बढ़कर हार के बाद फिर उठकर खड़ा होना सिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, खेलों के जरिए नशा मुक्त भारत का संकल्प भी पूरा हो सकता है। खेलो इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने का अभियान भी है। खेलो इंडिया के जरिए पीएम मोदी का संदेश और फोकस जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं को मजबूत करने, वैज्ञानिक तरीकों से प्रतिभाओं की पहचान करने, बेहतर कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर भी है, क्योंकि आज का युवा ही कल के भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो खेलिए, बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए।
2: खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो।
0: जी हाँ, बिल्कुल, खेलो इंडिया और दुनिया को जीतो, फिट रहिए, हिट रहिए, तमाम खेलों को लेकर जो प्रोत्साहन हो रहा है उसका प्रदर्शन जमीनी हकीकत के रूप में सामने आता है जब हम ओलंपिक में, पैरालंपिक में या किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नित नई कामयाबी हासिल करते हैं। और ये सिलसिला अब आगे और भी बेहतर होगा क्योंकि जिस तरह का प्रोत्साहन है, और अब तो 2030 में हम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी में है, तो तैयारी अभी से करनी है। तो ऐसे युवा जो खेलों में आगे आना चाहते हैं उनको अपनी कड़ी मेहनत लगन के साथ अभी से कमर कस लेनी चाहिए। बहरहाल अब बात करते हैं विश्व कप की, हॉकी विश्व कप की। तो आज महिला हॉकी टीम का मुकाबला खेला जाना है, भारतीय महिला हॉकी टीम का 5 में से 6 स्थान के लिए जर्मनी के साथ, और जो लाइनअप है महिला हॉकी की वो भी तय हो चुकी है। नीदरलैंड और बेल्जियम में चल रहे महिला हॉकी विश्व कप में दोनों मेजबान टीमें खिताब जीतने से 2 जीत दूर खड़ी हैं, लेकिन इनमें से एक ही फाइनल में पहुंचेगी क्योंकि सेमीफाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला आज रात 9:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच रात 12 बजे से खेला जाएगा, पर इन दोनों मुकाबलों से पहले भारतीय हॉकी प्रेमियों की निगाह उस मुकाबले पर होंगी जहां भारत और जर्मनी की महिला टीमें एम्स्टलविन में शाम 6:30 बजे से आमने सामने होंगी। 5वें से 6 स्थान के लिए होने वाले इस क्वालिफिकेशन मुकाबले में अगर सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम जीतने में सफल रहती है तो यह उसका विश्व कप में दूसरा श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। 1974 में भारतीय टीम 4थे स्थान पर रही थी। भारत के लिए मैच 5वें स्थान की लड़ाई नहीं है बल्कि 52 साल बाद विश्व कप में नया इतिहास रचने का मौका भी है। भारतीय टीम ने जिस तरह टूर्नामेंट में चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ खेला है।

उसे यह तो तय है कि भारतीय रक्षा पंक्ति को अपने मजबूत प्रदर्शन को जारी रखने की जरूरत है। बेशक विश्व कप में भारत और जर्मनी के बीच जो दो मुकाबले हुए हैं पिछले, उनमें दोनों बार जर्मनी टीम जीतने में सफल रही है। पहली बार 2016 में मैड्रिड में, और इसके अलावा जर्मनी 3-2 से जीती थी तब, उसके बाद 2000 इससे पहले दूसरी बार 2010 में रोसारियो में 4-1 से जर्मनी ने हराया था। लेकिन पिछले साल FIH प्रो लीग में भारतीय टीम ने जर्मनी को 1-0 से पराजित भी किया है। 4 साल पहले 2022 में FIH प्रो लीग में 1-1 से ड्रॉ भी खेला है। ओलंपिक क्वालिफायर में भी भारत जर्मनी से बराबरी करने में सफल रहा था। भारत और जर्मनी के बीच कुल 12 मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने 2 जबकि जर्मनी ने 7 जीते हैं, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। आंकड़ों में जर्मनी का पल्ला भारी है। जर्मनी निश्चित रूप से आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, यह विश्व कप की मजबूत टीमों में है और 2 बार की विश्व चैंपियन भी है। 1976 विश्व कप में जर्मनी ने कांस्य पदक के मुकाबले में भारत को हराकर चौथे स्थान पर धकेला था। यदि भारतीय टीम आज जर्मनी को हराती है तो उस हार का मलाल कुछ हद तक कम हो सकता है, और विश्व कप जैसे स्थान पर, 5वें स्थान पर आना एक भारतीय टीम के लिए एक बेहतर प्रदर्शन होगा। एशियाई खेलों से पहले भारतीय टीम के लिए ये मैच बड़ा इम्तिहान है। अगर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो जापान के आईजी नगोया में होने वाले एशियाड में बड़े मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी। कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी मैदान में होगी, उसे 7वीं

0: महासमुंद छत्तीसगढ़ से फरमाई भेज रहे हैं जीतू ध्रुव और इनका पूरा परिवार।
1: और मुरादाबाद दुल्लापुर से भी ये पैगाम आया है कि हमें कोई रागनी सुनवाए, मुकेश कश्यप उनका पूरा परिवार है। उधर नांदेड़ के ताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और पूरा परिवार है। हितेंद्र दास आसाम से कह रहे हैं कि कोई रागनी हमें सुनवा दीजिए।
0: खैल
1: बाजार पानीपत से नरेंद्र मल्होत्रा, नीटू, अलक्षय और पूरा परिवार कह रहा है कि कोई रागनी सुनवा दे।
0: ये SMS हमें मिला है भाई संदीप मक्कड़ का, भेज रहे हैं ये हमें SMS पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से। और ये SMS हमें मिला है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से, भेजने वाले हैं रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर लोकेंद्र की आवाज़ में ये उपदेशिक रागनी।
2: धरती की

0: तो शाहिद भाई अभी हमारे भाई सुन रहे थे लोकिंद्र की आवाज़ में ये उपदेशिक रागनी।
1: जी,
0: और अगले
1: और
0: जो हमारे
1: एसएमएस का
0: कलाकार,
1: सिलसिला लगातार जारी है।
0: बिल्कुल, और देखिए अगले जो हमारे कलाकार हैं वो है राजेंद्र जाटव, और इनके लिए भी हमारे पास में एसएमएस आ चुके हैं। और ये एसएमएस हमें मिला है भटिंडा रोड मंडी डब वाली से, भेजने वाले हैं भाई राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमारे पास में आया है सादुल शहर राजस्थान से, भेजने वाले हैं राम कुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। गांव फरांसी जिला हिसार से फरमाई भेज रहे हैं राजकुमार डुड्डी और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाई भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाई भेज रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार।
1: और भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: ये
1: और
0: फरू
1: ये कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और उनका पूरा परिवार कह रहा है कि ये फरमाइश।
0: पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फरमाई भेज रहे हैं सुदर्शन शाह और इनका पूरा परिवार। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाई भेज रहे हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार।
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहलकर, निर्मला नहलकर और विशाल नहलकर कह रहे हैं कि

0: हमारी रागनी को फरमाइश को शामिल कर लीजिए। और गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान और साइमा नवाज के साथ पूरा परिवार है।
1: और इन्हीं के लिए SMS आया है, भोलाना कॉलोनी घरौना जिला करनाल हरियाणा से भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार जैजान और उनका पूरा परिवार। और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से फरमाई भेज रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी और उनका पूरा परिवार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से फरमाई भेज रहे हैं मुकेश शर्मा और उनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ हजदा नंबर 2 से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं कमलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भी फरमाइश भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं राजेंद्र सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो साहिद भाई अभी हमारे भाई सुन रहे थे राजेंद्र जाटव की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था भाई महाराणा प्रताप का। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है।

0: उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हर बार की तरह हम इस कार्यक्रम में नए नए विषय लेकर आते हैं, तो आज का विषय है अपेक्षित एवं गौर फलों की खेती के उभरते हुए अवसर।
4: बिल्कुल सही कहा आपने मंजीत, और हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं पर भी बात करेंगे, अपने किसान भाइयों को जानकारियां देंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कृषि सलाह, मौसम, बाजार भाव और मनोरंजन की भी बात हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान करेंगे मंजीत।
3: बिल्कुल, तो गौतम, विभिन्न योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं और उनमें से एक योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसका उद्देश्य पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन और चारा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है और पशुओं की नस्ल में सुधार करना है।
4: मंजीत बहुत सही कहा आपने, ये जो उद्देश्य है इस योजना का, एक तो है कि सब्सिडी भारत सरकार देती है अपने किसान भाइयों को, जिससे उनको लाभ प्रदान होता है। अगर पात्र हैं इस योजना के तो आपको 50% तक सब्सिडी दिया जाता है। और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अगर बात करें तो पशुओं की जो नस्ल है उसमें सुधार करना, मांस, अंडा और उनका उत्पादन जो है वो बढ़ाना, चारा का विकास करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है मंजीत।
3: इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना भी है। इससे युवा और किसान पशुपालन से जुड़े व्यवसाय शुरू करके अपनी आय बढ़ा सकता है। पशुधन की उत्पादकता बढ़ने से दूध, मांस, अंडा और अन्य पशु उत्पादकों का उत्पादन भी बढ़ता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि किसान आधुनिक तकनीक, अच्छी नस्ल और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाए तो पशुपालन उनकी आय को और मजबूत और साधन भी बना सकता है। और विशेषकर हम बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, तो किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और देश के पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
4: बिल्कुल सही कहा मंजीत आपने, और जो पशुधन मिशन है हमारा, किसान भाइयों के लिए पशुधन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुधन रखें और पशुधन का पालन करें तो उससे उनका आमदनी दोगुना चौगुना बढ़ सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को व्यवसाय में से इनको अपनाना चाहिए, क्योंकि वो पशुओं को अगर अपने साथ रखें, और एक तो आप पशुओं को पालन करेंगे, जैसे आप कृषि का व्यवसाय करते हैं, साथ साथ उनका जो चारा है वो आपके

0: वेस्टेज है उससे भी निकल जाता है, तो आपके खर्च भी कम हैं और पशु से आपको दूध, घी, मक्खन जो भी है आप जिस तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है।
1: बिल्कुल, आम के आम और गुठलियों के दाम।
0: जी
1: तो गौतम, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपेक्षित एवं गौर फलों की खेती के उभरते हुए अवसर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी, अध्यक्ष फल विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर अवस्थी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे फल हैं जिनको हमारे किसान भाई या श्रोता नहीं जानते हैं, वो कौन कौन से हैं?
3: देखिए, जैसे कि आपने अभी चर्चा में आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जैसे आम है, अमरूद है, केला है।
2: जी
3: इन फलों को तो सभी लोग जानते हैं, किसान भी जानते हैं अच्छी तरह से, व्यापारी भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो बिल्कुल शुष्क अवस्था में होते हैं और जिनकी औषधीय गुण जो है बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं बताना चाहूंगा, जामुन। जामुन एक ऐसा फल है जो कि आज के समय में उसका अपना विशेष स्थान है। उसी तरह केर है। केर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है जहाँ बिल्कुल वर्षा आधारित रहता है ये, और जहाँ पे पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ केर हो सकता है। फिर एक फल होता है लसोड़ा। लसोड़ा जो है वो सब्जी वगैरह बनाने में काम आता है। इसी तरह करौंदा है। करौंदा जो है आजकल बहुत किसान भाई जो है नींबू को काट करके जो है करौंदा की खेती कर रहे हैं। इसी तरह चिरौंजी है। इस तरह से कुछ फलें हैं जो अपना विशेष स्थान रखती हैं और ये औषधीय गुणों से जो है भरपूर होते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जामुन की बात करें तो जामुन जिस समय आता है तो उसके कहते हैं कि पूरा फल, यहाँ तक कि गुठली भी लोग खाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हमारे मधुमेह के रोगी होते हैं या जिनको मधुमेह की समस्या होती है तो वो लोग इसका ज़्यादातर सेवन करते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया लसोड़ा, ये कहाँ पाया जाता है, इसका किस तरीके से उत्पादन करते हैं?
3: जामुन के बारे में तो सभी जानते हैं कि आज जामुन जो कि बिल्कुल पहले जो है कि सड़क किनारे होता था और उस समय कोई किसान उसको लगाते नहीं थे,
2: जी
3: लेकिन आज मधुमेह के रोगियों के बीच में जो है जामुन काफी प्रचलित हो गया है। और उस बीज को भी निकाल करके सुखा करके जो है उसका पाउडर बना करके
2: जी
3: जो है डायबिटिक पेशेंट उसको लेते हैं। तो जामुन का तो अपने विशेष महत्व है। और जहां तक लसोड़ा की आप बात करते हैं, लसोड़ा बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान के बीकानेर है या बाड़मेर है या जैसलमेर है, जोधपुर है, और दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं वहां पे लसोड़ा बहुत सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। और लसोड़ा का खास महत्व ये है कि इसमें जो है गम, जो गोंद जैसे पदार्थ जो है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है वो बहुत अधिक होता है और ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके अचार के साथ साथ जो है इसकी सब्जी बहुत बनाते हैं लोग शुष्क क्षेत्र में, जो कि सब्जी की बहुत कमी रहती है, तो इसको सब्जी बना के में प्रयोग लेते हैं।
2: और डॉक्टर साहब, जो आपने कैर की बात करी, ये जो छोटा छोटा दाना होता है उसी की तो बात कर रहे हैं कि कोई और
3: बिल्कुल
2: है?
3: नहीं, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि हमारे किसान भाई या कोई दूसरे जो है अगर कभी अचार खाते हैं, जैसे
2: जी
3: कि बाजार से हम मिक्स अचार खरीद के लाते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि छोटे छोटे जो है वो मटर के दाने का आकार का होता है, उसमें
2: बहुत
3: से
2: छोटा
3: बीज जो
2: होता है।
3: है छोटी होती है। अब बीज जो है वो कड़ा होता है, उसका थोड़ा सा बीज होता है उसमें, इसको केर के नाम से जाना जाता है। और केर जो है आज के समय में बहुत ही एक महत्वपूर्ण फल है। इसमें जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी कैंसरस होता है और इंडियन मेडिकल जो है IMR जो है उसको पेटेंट भी कर रहा है। और ये कैंसर के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, इसके कैंसर की दवा बनती है। और केर की सबसे खास विशेषता है कि अचार के साथ साथ जो है इसका सब्जी भी बनाते हैं। राजस्थान वगैरह में आप अगर कभी जाइए तो इसकी सब्जी भी बनती है, और इसकी सब्जी आम घरों में ही नहीं वो प्रचलित है, ये जो है 5-स्टार होटल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और राजस्थान में एक पंचकुटा करके बनाते हैं, तो पंचकुटा में जो है केर को जो है डालना बहुत जरूरी होता है, और ये बड़े बड़े होटल 5-स्टार और शादियों में काफी प्रचलित रहा है।
2: तो डॉक्टर साहब, इसी तरीके से जैसे अचार का जिक्र किया है, ये करौंदा भी तो झाड़ियों की तरह लगता है, उसमें छोटे छोटे होते हैं और इसका भी अचार डालते हैं?
3: हाँ बिल्कुल, इसमें जो है करौंदा, देखिए क्या हो रहा है आजकल नींबू में बहुत सारी समस्या आ रही है। नींबू में क्या हो रहा है कि अचानक पेड़ सूखने लगा है, तो किसान क्या कर रहा है कि इस समय जो है नींबू को काट करके जो पौधे सूख गए हैं उसमें वो करौंदा लगा रहे हैं। अब देखिए करौंदा के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये बहुत अच्छी झाड़ी बनती है इसकी, मतलब ये जानवरों से आप बचाव कर सकते हैं, इसको बाउंड्री में किसान भाई इसको लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जानवरों
2: बिल्कुल
3: से तो बचाव होगा ही होगा।
2: जी
3: अब जो जो इसमें फल आते हैं वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसका अचार बहुत अच्छा बनता है और दूसरा आजकल इसकी जली बन रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे किस्म आ गए हैं जो बिल्कुल रंगीन होते हैं, जैसे कि मैरून रेड है या थार है, पंत सुजाता है।

0: है, पंत सुवर्णा है, पंत शिवानी है, कई ऐसे किस्में हैं जो बिल्कुल के गूदा जो है बिल्कुल गाढ़े लाल रंग का होता है, उससे जली जो बनती है बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है।
1: एक तो करौंदे का फायदा जो हमारे बागवान भाई हैं, अगर कहीं भी बागीचे लगाते हैं फलों के, तो उसके आसपास अगर उसको बाउंड्री के तौर पे लगाएं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक तो सुरक्षा होगी, दूसरे आपको इससे मिलने वाली फलस से आपको इनकम भी होगी।
0: और एक इसका और महत्व है
1: जी
0: कि करौंदा की जो पत्तियां गिरती हैं, आप जहां भी करौंदा लगा रहता है उसमें मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आप दूसरे फल वृक्ष लगाते हैं, आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, उसकी पतझड़ होती है, उससे जितना ऑर्गेनिक कार्बन जाता है उससे कई दोगुना या तीन गुना अधिक जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये करौंदा की पत्तियों से जो है मृदा में मिलती है उसको।
1: मतलब जो हमारे मृदा की संरचना में भी बदलाव होता है, उसके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने जिक्र किया था एक फल जो फालसा होता है, ये कहाँ होता है, इसका क्या महत्व है?
0: देखिए, फालसा जो है बिल्कुल झाड़ी नुमा होता है और ये मई में जो है पक करके तैयार हो जाता है। अब फालसा का सबसे, क्योंकि आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी फल है क्योंकि उनकी हीमोग्लोबिन की समस्या होती है, तो अगर ये फालसा का जूस पीते हैं तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कंटेंट उनके उसमें बढ़ जाता है। अब फालसा जो है झाड़ी नुमा होता है, बस फालसा में एक ध्यान देना चाहिए कि जो भी किसान भाई अगर फालसा लगाते हैं तो उसमें जो है कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है और दिल्ली में इसकी कीमत करीब 150 से 200 रुपये किलो इस समय जो है रहता है गर्मियों के दिनों में।
1: तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कहीं कहीं मैंने सुना है कि ये अपना नागफनी है, इसका भी फलों में ही बड़ा महत्व है।
0: आजकल देखिए बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में जहाँ बिल्कुल जो है पानी की बहुत समस्या है या पानी नहीं मिल पाती है, आजकल शुष्क क्षेत्रों में जो है नागफनी की खेती करते हैं लोग। तो नागफनी लोग सोच करके बहुत वो लगता है कि नागफनी से
1: हाँ,
0: क्या
1: इसमें
0: फ़ायदा
1: कांटे होते
0: होता होगा,
1: हैं।
0: उसमें तो कांटे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नागफनी में जो छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं तो
1: जी,
0: उसको जो
1: जो
0: है
1: फूल
0: फल
1: जैसा
0: को,
1: दिखाई
0: हाँ
1: देता
0: फूल
1: है।
0: जैसे दिखाई देता है, उसको निकाल करके जो है उसमें 5-स्टार होटल में या जो होटल्स में होते हैं वहाँ सप्लाई करते हैं और इससे जो है किसान भाई काफ़ी अधिक आमदनी ले रहे हैं।
1: देश में भी और विदेशों में भी इसकी मांग है सर।
0: हाँ, विदेशों में खास करके मैक्सिको में, मैक्सिको में बहुत सारी अच्छी उन्नत किस्में भी वो विकसित की गई हैं और मैक्सिको से बहुत सारी किस्म हमारे भारत में भी जो है लाई गई हैं, उनकी खेती जो है रेगिस्तान के ये बीकानेर या जोधपुर या जयपुर के इलाके में काफ़ी कर रहे हैं आजकल।
1: डॉक्टर साहब, कहते हैं जलेबी तो लोगों ने खाई है, लेकिन एक नाम है जंगल जलेबी, तो ये भी कहीं कहीं पाया जाता है और इसकी भी मांग रहती है, इसका क्या महत्व है?
0: देखिए, जंगल जलेबी कभी हम लोग बचपन में जो है उसको जाते थे तो होता था तो उसको तोड़ करके खा लेते थे, उस समय ये मालूम नहीं था कि जंगल जलेबी आज के समय में इतना महत्वपूर्ण फल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग कहते हैं कि जैसे कि आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आंवला के बाद जो है ये सब फल हैं जैसे कि जंगल जलेबी है या मकोई है, इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसे लेने पर जो है एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
1: जी, आपने मकोई का भी जिक्र कर दिया है डॉक्टर साहब। एक सहतूत भी होता है, इसके भी छोटे छोटे वाले हैं होते हैं, उनकी भी मांग रहती है।
0: हाँ, शहतूत, देखिए शहतूत जो है ऐसे ही पेड़ होता है, गर्मी में इस समय जो है शहतूत काफी उपलब्ध है पूरा जो है, इसमें आयरन ज्यादा होता है, विटामिन सी ज्यादा होती है और उसके बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है। और आजकल जो आ रही हैं किस्में आ रही हैं कुछ शहतूत के, वो बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ रही हैं जिसमें कि एक फ्रेगनेंस भी होता है, उसको कर सकते हैं और इसके साथ शहतूत के साथ साथ जो है इसका सिल्क में भी बनाने के काम आता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं फलों की, अब एक आता है कि चिरौंजी, जिसको हम मसालों में भी प्रयोग करते हैं, और उसको गिनती फलों में कैसे होती है?
0: चिरौंजी देखिए ये जो है जैसे कि काजू को हम कहते हैं,
1: जी
0: काजू है या अखरोट है,
1: जी
0: ये सब जो है उसमें फलों में ही गिनते हैं,
1: हाँ,
0: तो
1: ड्राई
0: चिरौंजी
1: फ्रूट।
0: भी जो है एक ड्राई फ्रूट के लिए है। चिरौंजी आमतौर पर ये जो आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे है
1: जी
0: वहाँ पे जो है जंगल के बीच में ये खड़े रहते हैं, इसकी खेती बहुत प्रचलित नहीं है क्योंकि अभी कोई अच्छी किस्में विकसित नहीं हुई है, एक आध दो हैं, CT10 है और CT8 है जो विकसित की गई हैं। तो इसमें क्या काम करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या चिरौंजी के साथ है कि चिरौंजी कोई लगाता नहीं है, खास करके आदिवासी क्षेत्र में ये पेड़ खड़े रहते हैं और उसको आदिवासी भाई अपने जो है उसको काट लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे फल होते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब तुड़ाई करने के बाद जो है उसको बाजार में ला करके उसको बेचते हैं और ये ना आमतौर पर कि खीर वगैरह जो बनाते हैं
1: जी
0: उसमें ये
1: जी
0: डालने के काम आता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और करीब इस समय जो है करीब 150 से 200 रुपये किलो के रेट से ये बिकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो अपरिचित फल फल हैं।

0: राजेंद्र जामुन है, उसके बाद वहाँ जामवंत तो विकसित की गई है लखनऊ से जो है, ये सब
1: जी
0: बड़े अच्छे किस्म हैं जामुन के, जो कि बिल्कुल गूदा बहुत ज़्यादा होता है और बीज की मात्रा कम होती है। उसी तरह अगर आप करौंदा की बात करें, करौंदा में भी कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कि पूसा पंत सुदर्शन है, शिवानी है, मैरून रेड है। अभी काजरी जोधपुर से थार मरु कर करके एक किस्म है जो विकसित की गई है करौंदा की, सीजेट के 2011 है, 2022 है, 2031 है, तो इन फसलों में तो काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। उसी तरह मलबरी जो शहतूत की आप बात करें,
1: जी
0: शहतूत में भी कुछ अच्छे किस्म हैं, लेकिन कुछ ऐसे फसल हैं जैसे कि केर के बारे में, तो केर में अभी भी जो है कोई विकसित किस्म नहीं है। इसमें केवल आप जाइए कभी राजस्थान या दूसरे इलाके में जाइए जहाँ ये होता है केर, तो आपको केवल दो टाइप के मिलेंगे उसमें, एक जो है बड़ा होता है, एक छोटा होता है।
1: जी
0: तो छोटे वाले की कीमत जो है वो ज़्यादा होती है बड़े वाले की अपेक्षा से, क्योंकि उसकी सब्जी वगैरह बहुत स्वादिष्ट बनती है और बड़े वाले में बीज चूंकि बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उसमें वो कम प्रचलित है। लेकिन किस्मों के नाम पे वो इसी नाम से जानते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। इसी तरह गूंदा में, जिसको कि हम लसोड़ा भी कहते हैं,
1: जी
0: तो लसोड़ा में एक अभी किस्म विकसित की गई है केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से, ये थार बोल्ड करके है, बहुत अच्छी किस्म है वो, और वो दोनों सब्जी और अचार बनाने के काम में आ।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से फल हैं जिनको तो संरक्षित करने की क्षमता होती है, लेकिन एक जामुन ऐसा फल है कि ये बहुत जल्दी खराब होता है। क्या कुछ आपके वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जाए और ज़्यादा दिन तक इसके चाहने वाले प्रयोग कर सकें?
0: आपने सही कहा कि जो है तुरंत तोड़ने के बाद जो है उसको तुरंत बाजार भेजना पड़ता है, नहीं तो जो है वो खराब हो जाता है।
1: जी
0: आजकल इसकी पल्प निकाल करके बिल्कुल डीप फ्रीजिंग कर दे रहे हैं, और इसी तरह इसका जो है जूस भी बनता है, कुछ लोग स्क्वैश भी बनाते हैं, कुछ लोग इसका जाम भी इसकी जो है उससे बना लेते हैं।
1: जी डॉक्टर ओपी अवस्थी जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो हमारे अपरिचित फल हैं उनके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो गौतम, इस कार्यक्रम में जानकारी के साथ साथ तो मनोरंजन भी करवाते हैं, तो सावन चल रहा है और सुनवाते हैं सावन का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सावन का गीत।
1: तो गौतम, बात कर लेते हैं मौसम के हाल की। तो कल का मौसम कैसा रहने वाला है? तापमान लगभग 28 सेल्सियस से 37 सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना कम दिख रही है। दोपहर में गर्मी और उमस महसूस हो सकती है।
0: मंजीत, हम लोग अपने कार्यक्रम में मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह देते हैं अपने किसान भाइयों को। अगर किसान भाई स्वीट कॉर्न, जिसको कि माधुरी या बेबी कॉर्न भी आप बोल सकते हैं, उनकी अगर बुआई करनी हो तो आप मेड़ों पर करें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि फूलगोभी की पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2, पंत शुभ्रा की रुपाई हेतु पौध तैयार करना शुरू करें। खरीफ प्याज की तैयार पौध की रुपाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर ही करें।
0: अगर वही किसान भाई अगर कद्दू बरगी एवं अन्य सब्जियां हैं अगर किसान भाई उगाते हैं, तो उसमें एक चीज उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है। वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो सके मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें, कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें और कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो रुपाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर ही करें। तो गौतम, अब हम बात करते हैं आजादपुर मंडी के फल एवं सब्जियों के ताजा भाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की। तो आलू है 15 से 18 रुपए प्रति किलो। वहीं प्याज की बात करें तो 25 से 35 रुपए प्रति किलो। टमाटर 25 से 35। और बीन्स की बात करें तो 30 से 60 रुपए प्रति किलो। और बैंगन इस समय 15 से 25 रुपए प्रति किलो है।
0: बिल्कुल मंजीत, आपने सब्जियों की बात की और फल भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और केला अगर बात करें तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो। सेब की बात करें तो 150 से 180 रुपए प्रति किलो। और अमरूद की बात करें तो 80 से 100 रुपए प्रति किलो। मौसमी 30 से 40 रुपए प्रति किलो। और पपीते की बात करें तो 30 से 40 रुपए प्रति किलो। किसान भाइयों, हम अभी आपके साथ फल और सब्जियों के भाव साझा कर रहे थे, जो कि हमें आजादपुर मंडी से प्राप्त होते हैं। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसन किसान वाड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़लें। गज़लों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 7:45 होने को हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज राजधानी के द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में H1N1 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। श्री सिंह ने अस्पताल में बनाए गए विशेष H1N1 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने के साथ मरीजों के इलाज और देखभाल के इंतजामों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन, दवाइयों, फ्लूइड, स्वास्थ्य परीक्षण और दूसरे जरूरी मेडिकल सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
2: हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर्स, सारा स्टाफ काम कर रहा है। उनसे इंश्योर किया कि आइसोलेशन रूम बने और आइसोलेशन रूम में हर चीज की सुविधा हो, जिसमें आप टेस्ट कर सकें, आप कोई इमरजेंसी हो आप फ्लूड दे सकें, सारी चीज की व्यवस्था रहे। साथ साथ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, रात की इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल रहे। हमने ये इंश्योर किया है कि चाहे टेस्ट की बात हो चाहे दवाई की बात हो, हर चीज अवेलेबल रहे और हर चीज हर हमारे हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबोधन प्रेरण कार्यक्रम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य में अन्वेषक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। श्री संधू ने विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसर तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष बल दिया गया।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेटियां इंजीनियरिंग, तकनीकी, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं को केवल मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि AI और नई तकनीकों की निर्माता बनकर भविष्य के समाधान तैयार करने चाहिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा नेत्र नारी नेतृत्व जैसी पहले आगे बढ़ाई गई है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्वेलेंस ड्रोन विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राजधानी की हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार लगभग 160 एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही छात्र और युवा उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 400 करोड़ रुपए की स्टार्टअप और ऊष्मयान नीति को मंजूरी दी गई है। श्री सूद ने छात्राओं से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित करने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि दुनिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षमता की सराहना कर रही है और इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2-5 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 में करीब 8-10 देश साझेदार देश शामिल होंगे। श्री जोशी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने नवीकरणीय स्रोतों से 300 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 50 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं। साथ ही पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonline

0: aair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खंडेरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर NCCF नेफेड और केंद्रीय भंडार के बिक्री केंद्रों तथा दिल्ली में मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि देश में प्याज के उत्पादन या उपलब्धता की कोई कमी नहीं है।
2: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है। वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार भाटिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान आदर्श नगर क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड DSIIDC के वरिष्ठ अधिकारी, जहांगीरपुरी स्थित राजस्थान उद्योग नगर से जुड़े प्रतिनिधि तथा वन एवं खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान उद्योग नगर में DSIIDC द्वारा कराए जा रहे सड़क और वर्षा जल निकासी कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बुनियादी ढांचे के कार्य टिकाऊ, दीर्घकालिक और तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्री सिरसा ने औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित संबंधित विभागों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान की प्रथाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नई दिल्ली नगर परिषद के क्षेत्रों में लापरवाही के कारण जल जमाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात श्री सिंह ने परिषद की बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान श्री सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दोबारा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम की विशेष, तदर्थ और वैधानिक समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज सिविक सेंट्रल स्थित निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल किए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने निगम की समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले पार्षदों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ और 1 सितंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू हुई। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक सदन से बाहर ही रहे। इसके बाद विपक्ष के नेता और अन्य विधायकों ने विरोध दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज पॉट्स यूनिवर्सिटी

0: से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसे पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारी मौसम से पहले राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब हो चुकी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। श्री सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीमों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पनीर, खोया, घी, मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों के 37 नमूने एकत्र किए। उन्होंने बताया कि इन सभी नमूनों की गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा और प्रयोगशाला के नतीजों तथा कानून के लागू प्रावधानों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से राखियां बांधी। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर कल तक के लिए एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि इस दौरान आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और विकास मार्ग के आसपास पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही अधिक रहने की आशंका है। पुलिस ने यात्रियों को इन मार्गों पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने को भी कहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए वाहन चालक डायवर्जन संबंधी संकेतों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे ए बालकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने समाज के प्रति बालकृष्णन के उल्लेखनीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक से अधिक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और राष्ट्र सेवा को समर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राजधानी दिल्ली में आज भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 8 बज चुके हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका। रात की इस शांत फिजा में जब चारों ओर खामोशी ने अपनी चादर ओढ़ ली है, तो आइए सुनते हैं खूबसूरत नगमों के साथ इस पल को हसीन और भी बना देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम गीत मालिका की इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी दोस्तों, शाम ढल रही है और दिल को है उनसे मिलने का इंतज़ार। कुछ ऐसी ही खूबसूरत है मोहब्बत, हर पल लगे जैसी कि पहली मुलाकात का है एक प्यारा सा खुमार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, मोहब्बत इतनी हो कि उसकी खुशी अपनी खुशी से भी प्यारी लगे, उसका साथ मिले तो हर मुश्किल आसान और हर पल खास लगे, प्यार हद से गुजरे तो बस इतना कि दिल में उसकी जगह कोई और ना ले सके। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत ये गीत फिल्म बरसात से। आइए सुनते हैं गीत मालिका का अगला फूल।

दोस्तों, उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था कि दिल ने बिना सोचे अपना मान लिया। एक नज़रे क्या मिली उनसे, मोहब्बत ने अपना पूरा अफसाना लिख दिया। विनोद राठौड़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत ये गीत, जो दिल को और भी खुश कर दिया था। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपके भी पैर थिरकने लग गए थे। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही खूबसूरत गीत। मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया।

दोस्तों, कभी कभी जाने दो के पीछे भी रुक जाओ छुपा होता है। बस समझने वाले की नजर और महसूस करने वाले का दिल चाहिए। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सागर से।

दोस्तों, प्यार भी अजीब चीज़ है। जब धीरे धीरे दिल में उतरता है ना, तो उसका रंग कुछ और ही होता है। पहले एक छोटी सी पसंद होती है, फिर उसकी आदत बन जाती है, और कब वही इंसान दिल की खूबसूरत वजह बन जाता है पता ही नहीं चलता। शायद इसी एहसास का नाम है

दोस्तों, अगर रहा मुश्किल हो ना तो थोड़ा ठहर जाना, मगर हिम्मत मत हारना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा रखना। यही इस गाने में बताया गया है कि अपने प्यार पे भरोसा करिए।

हौसले के साथ सच्चा प्यार जुड़ जाए ना तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म कर्ज से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: दोस्तों, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है और इसे करना भी ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। इस गीत के साथ कार्यक्रम गीत माली का यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या

0: 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की और भारत तथा मेजबान श्रीलंका की। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111238 8719 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386 9779701075 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: Discussions are expected.
3: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
2: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
1: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
4: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
5: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं, तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
1: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
6: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
1: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
3: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1,300 missing people. Death toll rises to 359.

0: का 359 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी हफ्ते के रोज से उज़्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवर हॉलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानिब मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशानजद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिरखा दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेहमान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कल नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमूई तादाद 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हमा वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का ये सानहा पेश आया तब वहां 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें वो 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जनाब जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाक भारतीय सफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए रابطے में हैं, क्योंकि मुतासरा इलाकों में मुवासलाती रابطے मुनक़ता हो गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 21 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाली हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से राबता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 47 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान भेजा है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बीजिंग में वाकई भारतीय सफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की हैं। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय सफारतखाना उनके महफूज इनखिला के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तकरीबन 200 भारतीय शहरियों ने इनखिला के लिए मदद तलब की है। वजारत खारजा ने लोगों को तावन मुहैया करने की गरज से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। इस कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर राबता किया जा सकता है। +91 11 23 08 8718 +91 11 23 08 8719 व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के लिए इस नंबर पर राबता किया जा सकता है +91 99 68 29 19 88। इस आईडी पर ईमेल भी किया जा सकता है situationroom@meea.gov.in। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के इमरजेंसी राबता नंबर हैं +97 9 85 13 16 8 07 +97 9 70 9 10 7 5 00 और 9 77 9 81 03 2 6 1 1 7। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का फजाई सर्वे किया और नेपाल में आए जबरदस्त सैलाब के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। पेश एक रिपोर्ट।
2: बिहार में किसी किस्म की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 4 इजाफी बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर लौट रही है। जनाब चौधरी ने बघा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी समेत सरहदी इलाकों में आज इमरजेंसी तैयारियों का जायजा भी लिया।
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है।

فأشارت إليه.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887 और +9111230887 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779810316107 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की

0: शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की निर्यात बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli One project, as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jaiswal said, India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief for operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the Indian nationals stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 23 08 87 18, +91 11 23 08 87 19. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 291 988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 032 6117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the Lente tributary of the Bhotakoshi and first hit Temure near Nepal's border with China at Rasuwagadi.

0: वाह, क्या खूब आवाज़ थी किशोर कुमार की। क्योंकि उनकी आवाज़ की एक खासियत रही है कि उसमें शरारत, मस्ती और दर्द भी होता है। और जो अभी आपने गीत सुना वो फिल्म कुदरत से था। जो उनकी आवाज़ में थी वो थी रोमांस की बात।
1: और बिल्कुल शायद यही वजह है कि आज भी उनके गाए गीत हर पीढ़ी को उतने ही पसंद आते हैं।
0: तो ऐसा ही एक गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए। बढ़ते हैं अगले सुनहरे नगमे की तरफ। ये गीत रिश्तों की मजबूती और साथ निभाने की खूबसूरत बात तो कहता ही है, साथ में एक फिल्म के उस सीन को याद दिलाता है। अगर आपने देखी है तो वहाँ पर एक एक तरह से कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी जो है कसौटी पर है, और वहाँ पर आप ज़िंदगी से प्रेरित एक गीत गा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। ये बिल्कुल ऐसे दिखाता है कि जिंदगी में संघर्षों से कैसे लड़ा जाता
0: जी,
1: है।
0: तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

संगीत और इसके बोल जो सीधा दिल को छू जाते हैं। और देखिए, कहते हैं कि जो पुराने गीत हैं, इनकी खासियत भी यही थी कि हर गीत अपने साथ कोई ना कोई एहसास और कहानी लेकर आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको सुनवाते हैं एक मस्ती भरा एक और शानदार सा गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: तो आरती, अभी हमने जो ये गीत सुना वो फिल्म कर्ज से था, और गायिका रही लता मंगेशकर और गायक किशोर कुमार। और इस गीत में जो चंचलता और इसकी मस्ती है, उससे उसे सुनते ही एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, जिसका रंग बहुत अलग है।
1: बिल्कुल सही कहा कि जो गीत हैं, जो पुराने गीत होते हैं, इनमें रोमांस हो, शरारत हो या फिर ज़िंदगी की कोई गहरी बात, हर रंग को संगीत में बेहद ही खूबसूरती से पिरोया जाता है।
0: जी बिल्कुल। और ऐसा ही गीत अब आने वाला है जिसे हम बड़े ही प्यार से लेकर आए हैं, और वो जो गीत है ना वो एक दूजे के लिए है। यानी कि कहते हैं ना, कई बार जब दो लोग मिलते हैं, जिनके दो लोगों के मन मिलते हैं, तो उनके अंदर ना बहुत सी चीज़ें ऐसी समानता हो जाती है कि वो प्यार में डूब ही चुके होते हैं लगभग। और इसलिए इस फिल्म का नाम भी एक दूजे के लिए ही रहा है। तो आइए
1: बिल्कुल।
0: सुनते हैं एक दूजे फिल्म से लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में इस गीत को।

0: भाई इस गीत के माध्यम से एक बात तो सच है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करने का फ़ैसला करते हैं तो उनके रिश्ते में प्यार के अलावा विश्वास और साथ निभाने का जज्बा भी ज़रूरी होता है।
1: बिल्कुल, और पुरानी फिल्मी गीतों ने प्यार के इन एहसासों को कितनी खूबसूरती से शब्दों और सुरों में भी सजाया है।
0: तो चलिए अब इस सुरीले सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुरों की सरस्वती कही जाने वाली लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ के साथ एक आपको बहुत ही दिल को छू लेने वाला गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये एक ऐसा गीत जिसमें प्यार का एहसास बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ पेश किया गया है।
1: तो चलिए दोस्तों, गीत सुनहरे में पुरानी फिल्म संगीत के इस खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आपको एक और सदाबहार नगमा।

0: तो श्रोता, अभी आप इस खूबसूरत से गीत को सुन रहे थे, और देखिए ये गीत प्रीति जो मेरे दिल को भी काफ़ी सुकून देता है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये गीत। देखिए ये गीत जो है उन अधूरी ख्वाहिशों और उन एहसासों की बात करता है जिन्हें पाने की चाह तो दिल में रहती है, लेकिन कभी कभी वे सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती है।
1: जी बिल्कुल सही बात कही आपने, और गीत के बोलों में छुपी हुई तड़प, चाहत और इंतज़ार का एहसास इसे बेहद ख़ास बना देता है। और यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है कि वो ज़िंदगी के हर जज्बात को इतने खूबसूरत अंदाज में बयां करता है।
0: तो चलिए इसी खूबसूरत अंदाज को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला एक खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

तो अभी आपने सुना ये बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला गीत, नीला आसमान सो गया। और तो आइए दोस्तों, अब इस सुरीले सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में एक बेहद खूबसूरत गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें हमने सुनवाए आपको गोल्डन एरा के वो खूबसूरत से नगमे जिन्हें हमारे जो बहुत ही सुरीली आवाज़ वाले गायक और गायिकाएं रहीं, उनकी आवाज़ में हमने आपको ये गीत सुनवाए।
1: बिल्कुल, और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी पुराने फिल्मी संगीत के साथ। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलो हर्ट्ज़ पर। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा कार्यक्रम गीत सुनहरे। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में मकुई अशांग इलाके के IT रोड पर कल सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेनापति जिले में लोगों ने बंद का ऐलान किया। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शाम को राजधानी इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हमले की समीक्षा की गई और सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश

0: तो साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम गीत बहार, और अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और फिर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1,500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। BIS ने बताया कि 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करता है।

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत गज़ल का कार्यक्रम। 4 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और फिर होंगे अंग्रेज़ी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4 बज चुका है और प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
3: प्रस्तुति भक्ति संगीत का प्रातकालीन कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथी द्वारा प्रस्तुत गुरु ज्ञान संबंधर की रचना।

गोया चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और लीला राम गोपाल का है।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अब समय हुआ है 4:20 और आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत पर आधारित नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की भादो मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

तो श्रोताओं, आज आपको बता दें हम कि क्या क्या कार्यक्रम आप इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुनेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, देशभक्ति गीत आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मों से 5:20 पर।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे 6:10 पर। भगवान महावीर के उपदेश पर आप चिंतन सुन सकेंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 31।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:30 पर और 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा।

9:15 पर आप सुन सकेंगे वार्ता, जिसका विषय रहेगा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहां की जीवन शैली। वार्ताकार हैं हर्षिता विश्वास।

0: पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के नागरिक शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस बीच श्रीलंका ने कहा है कि वो नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। उधर कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। इंडिया हैज स्टेप्ड अप एफर्ट्स टू ट्रेस एंड रेस्क्यू इंडियन नेशनल

श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें कि आज आप सुनेंगे योग उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसी में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को